0: एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
1: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला क्लैरिटी के साथ.
2: सब कुछ साफ रख सकते हो
3: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती. कोई नहीं सोचता मेरे बारे में.
4: क्योंकि ये कौन बोला?
3: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना. अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
0: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
5: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिजल्ट्स में वेरी.
7: यार मैं थक चुकी हूँ. पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई. ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं. मेरे से नहीं होगा ये.
8: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं. बताया ना, जहाँ पार्टी है वही खाना है, जहाँ खाना है वही पार्टी है. सिंपल.
7: मतलब
8: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में. और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वही ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है. अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी.
1: विजिट फन पिज्जा किचन, FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
12: Don't touch that dial. Keep listening.

दोस्तों एंड वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यू आर लिसनिंग टू द फनेशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड ऑल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान, जहां पर मिलती है आपको मोर वैरायटी, मोर चॉइसेस, मोर फन ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनेशियाज नेटवर्क। एंड दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 5 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 6 मिनट्स पास्ट 7। बस कुछ अगले एक घंटे का सफर बचा है आपका और मेरा, और ये सफर आज का बिल्कुल कमाल धमाल और एंटरटेनिंग हो रहा है, क्योंकि आपको गाने सुना रही हूँ ऐसे जिसमें पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का लग के गाना जैसे रीमिक्स वर्जन निकल के बाहर आता है, उसे कहते हैं रीमिक्स गाना। जी हाँ, ऐसे रीमिक्स गाने जो अभी के बॉलीवुड मूवीज में बने हैं और फरमाए गए हैं या फिर सिनेमाटोग्राफी उनकी बनाई गई है, तो ऐसे गाने आप सभी को सुनवा रही हूँ। कुछ गाने मेरे पसंद के, कुछ गाने आपके पसंद के। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले रिमिक्स गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।

दोस्तों अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपको बता दूं द गृहप्रवेश.com ब्रिंग्स यू द इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो विच इज हैपनिंग ऑन मे 9th एंड 10th एट द ब्यूटिफुल हयात रीजेंसी फ्रिस्को डैलस में। मीट टॉप बिल्डर्स फ्रॉम सिटीज लाइक हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली NCR, शोकेसिंग ओवर 200 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड विलास टू प्लॉट्स एंड फार्म लैंड। वेदर यू आर लुकिंग फॉर रेडी टू मूव होम्स और एक्साइटिंग new launches, enjoy exclusive expo only deals designed just for you. They don't just dream it, they own it. Register now at gruhapravesh.com and take the first step towards your dream home in India.

रजनी दयाल एंड सुनिधि चौहान की आवाज में। सुनिधि दोस्तों, आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1। रीमिक्स गानों का सिलसिला चल रहा है दोस्तों आज यहाँ पर हमारे शो में, जिसका नाम है ये शाम मस्तानी ऑन। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा। विद दैट लेकर चलती हूँ आपको अगले रिक्वेस्टेड रीमिक्स गाने की तरफ।

स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से लिया गया था दोस्तों ये गाना आई एम श्योर आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा. अगले गाने की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक और हम हमारे लास्ट यू नो पार्ट ऑफ द शो में पहुंच जाएंगे. सो कीप लिसनिंग 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. ये है आपका अपना ये शमस्तानी शो विथ योर होस्ट आरजे अपूर्वा.

0: फिर कार्ड यूज किया?
1: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
0: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
1: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
3: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
0: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
0: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
1: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो।
1: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
4: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसी
5: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
0: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
5: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
0: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100%

0: मोर म्यूजिक मोर मैजिक और मोर मस्ती के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। स्टूडियो की घड़ी में हो चुके हैं 7:33, बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है आपका और मेरा आज के इस खूबसूरत से म्यूजिकल सफर में। आप गाने सुन रहे हैं रीमिक्स। जी हाँ, पुराने गानों में जब नए म्यूजिक का तड़का लगता है तो गाना बहुत ही अच्छी तरीके से निखर के बाहर आता है। ऐसे रीमिक्स बॉलीवुड में बने हुए गाने आप सभी को सुनवा रही थी और देखते ही देखते हमारा वक्त खत्म होने की बारी आ गई है, बट फिर भी कुछ गाने बचे हैं जो आपको सुनवाने हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आपको लेकर चलती हूँ अगले रीमिक्स गाने की तरफ। एंजॉय दिस ट्रैक।
1: हे, फिर देख रहा है, आज आंख सेक रहा है, कल हाथ सेकेगा, आज ढील छोड़ रहा है, कल खुद ही रोकेगा, आज मेरे लिए चेयर खींच रहा है, कल मेरी स्कर्ट खींचेगा।

0: दोस्तों, इफ यू आर इन्वॉल्व इन अ कार और ट्रक एक्सीडेंट और अ स्लीप एंड फॉल इंसिडेंट, अटॉर्नी ओमर ख्वाजा विल फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कंपेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी रियली स्ट्रेसफुल एंड फॉर ऑल दोज सिचुएशंस यू नीड एन अटॉर्नी दैट विल मेक श्योर दैट यू आर कंपेंसेटेड. यू डोंट पे अंटिल यू विन, दिस इज देयर मोटो. सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन यू कैन कॉल देम. द नंबर टू कॉल इज 4693005046 और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट विच इज attorneyomar.com.
1: We are the sounds of the streets. Ooh,

बागी थ्री से सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना विच इज़ कॉल्ड दस बहाने 2.0। वेल एक्चुअली ये गाना एक्चुअल में फिल्माया गया था अभिषेक बच्चन पर। इतने भिन्न भिन्न प्रकार के आज रिमिक्सेस आपको सुनवाए हैं दोस्तों, बट ये अगला जो रिमिक्स है वो कहते हैं ना सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, वही मैंने बेस्ट गाना लास्ट के लिए सेव करके रखा था, क्योंकि ये अगला गाना हम इसे रिमिक्स एंथम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस अगले गाने में इतने सारे पुराने गानों का एक गाना बना के ये गाना बाहर आया है। और डेफिनेटली इस गाने को रिमिक्स एंथम कहलाया जा सकता है, क्योंकि इस गाने में बहुत सारे पुराने गाने एक साथ जुड़ के एक बहुत ही अमेजिंग गाना बना है। तो ये गाना है फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी, एंड गाने की बोल ऐसे है, हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। इस गाने में इतने सारे पुराने गाने हैं, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट हीरोइंस के साथ ये गाना कोरियोग्राफ हुआ है, और ब्यूटीफुली तरीके से इसको शॉट किया गया है शाहरुख खान अनुष्का शर्मा पे पिक्चराइज ये मूवी विच इज कॉल्ड रब ने बना दी छोड़ी। सो ये कहते हैं सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट, सो यही लास्ट वाले गाने में आपको पूरे रिमिक्स गानों का एक सार आ जाएगा। ऐसी तरीके से हमारी शो को एंड हम करेंगे, और ये गाना सुनने के बाद आपको टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ जाएगा। सो चलिए विद ऑल द एंथुजियाज्म ये वाला गाना सुनते हैं, टेकन फ्रॉम द मूवी रब ने बना दी जोड़ी।

0: ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ रेडियो के घड़ी में हो चुके हैं 7:54. यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का. बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का. दोस्तों, आपके साथ से ये सफर बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है. यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है. With that, live fully, love passionately and laugh loudly. ले दियो आप सब सुविधा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा. दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. वो कहते हैं ना, हम है राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. जी हाँ, फिर मिलेंगे चलते चलते, ताकि आप सब लोग अपनी संडे की शाम अच्छे से गुजरा पाए और आने वाला दिन जो कल का मंडे है वो आपका भी बहुत ही अच्छे से आए. सो विशिंग यू ऑल अ गुड नाइट अहेड एंड आपका आने वाला कल का दिन बहुत ही अच्छे से जाए. एंड विशिंग यू द बेस्ट वीक अहेड. बाय बाय एंड गुड नाइट.
1: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM.

0: Welcome, welcome, Devio Sajano, Bhaiyo Bheno. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family, and loved ones. This is RJ Prem bringing the Sunday Pop Station on the airwaves of Fun Asia at 104.9 FM. Yaar, itna zabardast weather tha, yaar. I hope you all took the advantage of going out and just taking some sunshine, taking some vitamin D. It was fantastic. Bahut dino baad itna acha weather raha tha. And I'm looking forward to many more such days, yaar, before that crazy summer kicks in. And everybody who is new to Texas, just an FYI, ladies and gentlemen, be ready for that. But before that, there is some great days ahead. आप सभी के तो पता ही है, जो हमारे लॉयल लिसनर्स हैं उनको तो पता ही है ये बात कि ठीक 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हम बजाते हैं सारे पॉप सॉन्ग्स फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवी. सो लेट अस नो योर जैम. इट कैन बी फ्रॉम द 90s, 2000s एंड इवन टुडे, बट मेक श्योर दे आर फ्रॉम द एल्बम्स. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. वैसे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ ही जाते हमारे लोगों के, क्योंकि यार बिकॉज इट्स मच मोर इजियर. सो इफ यू गाइज वांट टू डू दैट, यू कैन डू दैट एज वेल. यू जस्ट गना हैव टू गो टू इंस्टाग्राम एंड जस्ट सर्च प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREM JOSHI पॉडकास्ट. And you, the DMs are always open. You can give me your suggestions, the songs that you want to suggest to somebody, and give a shout out. We will do that here on the airwaves of Fun Asia. Pehla gana hume recommend kar diya hai Ritvik ne, and gana bahut hi interesting hai. Agar aap log ne nahi suna hai, there's a band called as Indian Ocean, right? Indian Ocean karke ek band tha, aur unka gana hai Ma Reva. Have a listen.
1: Never miss an update. Subscribe.

सच एन अमेजिंग सॉन्ग. आई रियली फील लाइक ये गाना तो खत्म होना ही नहीं चाहिए. इंडियन ओशन का ये गाना है माँ रेवा, एंड उनका ये एल्बम है कंदिसा. एंड इफ यू हैवन हर्ड दिस, आई हाईली रेकमेंड यू लिसन टू दिस बैंड. इट्स अमेजिंग अमेजिंग टैलेंट आउट देयर. लेडीज एंड जेंटलमैन, कीप हिम कमिंग. बहुत जबरदस्त गाने आ चुके हैं सब लोगों के. DMs आर स्टिल ओपन. प्रेम जोशी पॉडकास्ट, PREMJOSHI podcast on Instagram. I talk to a lot of subject matter experts on different fields: immigration, law, health, diet, nutrition, astrology. आज एक हमारा नया एपिसोड लॉन्च हुआ है जिसमें हमने बात की एक इंडियन अमेरिकन मैचमेकर से. जी हाँ, Gen Z's and millennials का क्या outlook है with the marriage? Is it gonna die? Is it still going to be surviving? So what a fantastic conversation. So make sure you follow on Instagram, Facebook and YouTube and wherever you get the podcast. Galla Goriya karke gana hame recommend kiya hai Toshish ne. So have a listen, ladies and gentlemen. This is sung by Harbhajan Mann.

0: अरे यार लिटरली यार माइक छोड़ के नाचने का मन कर दिया यार. व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग, कीप एम कमिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे डालस वासियों को मैंने क्या बोल दिया कि पॉप गाने रेकमेंड कर दीजिए, और लोगों ने बैक टू बैक अमेजिंग रेकमेंडेशंस दे दिए. ऑलराइट, नेक्स्ट सॉन्ग इज ब्रेथलेस बाय शंकर महादेवन एंड दैट इज रेकमेंडेड बाय नीना. और अगर आप लोग के पास नीना जी की तरह ऐसे अमेजिंग गाने हो तो लेट अस नो योर जैम. 972-235-5555. मेक श्योर they're from the albums and not from the movies. And if you have a movie song recommendations, we will obviously play them from 9 to 10. But from 8 to 9 is a power hour of pop songs. Here we go. Papa,
1: जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे

एवरीबडी इन डैलस फोर्ट वर्थ एरिया इज अमेजिंग यार. जो लोगों ने गाने रेकमेंड किए, ओ माई गॉड, आई वॉज लिटरली होपिंग दैट मैं सारे ये कॉन्वर्सेशन लाइव ऑन एयर लेके आऊँ, क्योंकि लोगों ने नॉट ओनली मुझे सॉन्ग्स रेकमेंड किए बट द स्टोरीज बिहाइंड इट, द टाइम दैट देवर इन, दैट फेज ऑफ देयर लाइफ देवर इन, देवर ऑल्सो शेयरिंग विद मी. सो अमेजिंग अमेजिंग स्टोरीज, थैंक यू एवरीबॉडी. नेक्स्ट गाना हमें रेकमेंड किया है अरुण जी ने, और अरुण जी ने तो हमारे लिए एकदम काम ईजी कर दिया यार. उन्होंने एक नहीं बल्कि दो जबरदस्त गाने रेकमेंड किए. सो द फर्स्ट वन दैट ही रेकमेंड वॉज नाजिया हसन एंड बिडूज, बूम बूम. इट्स वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक सॉन्ग्स, एंड आई थिंक वो जो एवरग्रीन स्टेटस होता है ना कुछ गानों को दिया जाता है, आई थिंक दैट सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज द वन. सो हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन, बिकॉज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आफ्टर दिस वन, बट कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. सो हियर्स द सॉन्ग एंड देन वो गो फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक फॉर 30 सेकेंड्स, एंड जस्ट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @PremJoshiPodcast.

0: हेडिंग टुवर्ड्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि आपका और मेरा साथ रहेगा ठीक 10 बजे तक. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम, स्टे ट्यून्ड.
1: Now we come to run things on the road. See? This one happens to be the inspirational vibe.
2: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com. देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकौड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
7: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
10: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
9: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
10: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
11: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

All right, welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Kuch log dinner ki taraf ja rahe hain, kuch log ke dinners ho chuke hain, get-togethers ho chuke hain. Everybody's wrapping up their weekend. Sab tension mein rehte hain, yaar. Main dekha hai, 6 baje se leke 9 baje tak logon ki phati-phati rehti hai, yaar. They are like, oh my God, Monday is coming. Oh my God, the work week is coming. So the only goal of this show is ke stress-free ho jaye aap. जबरदस्त आपको गाने सुनवाए, यू नो वी ब्रिंग यू इन दैट अमेजिंग वाइब बिकॉज ऑफ दी सॉन्ग्स, बिकॉज दी सॉन्ग्स कैन बी फ्रॉम द 90s, फ्रॉम द 2000s. देयर आर सो मेनी मेमोरीज एसोसिएटेड टू ऑल दीज पॉप एल्बम सॉन्ग्स. सो दैट्स द गोल, टू मेक यू हैप्पी. एंड इफ यू हैव अ सॉन्ग इन माइंड, लेट अस नो यार. 972-235-5555 एंड विल प्ले द सॉन्ग एंड विल ऑल्सो गिव यू अ शाउट आउट. संजना ने हमें रेकमेंड किया है खलासी फ्रॉम द कुक स्टूडियो. आदित्य गढ़वी, क्या टैलेंट है यार उस बंदे में. एंड ही हैज ऑल्सो डन मेनी कॉन्सर्ट्स इन US, Canada एंड वर्ल्ड वाइड. ही साउंड्स एग्जैक्टली द सेम एज ही वॉज ऑन कुक स्टूडियो. वॉट अ ब्रिलियंट टैलेंट. हैव अ लिसन, लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: व्हाट एन अमेजिंग सॉन्ग यार. कोक स्टूडियो के सारे गाने मुझे लगता है एकदम बैंगर सॉन्ग्स है. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम. दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम. फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया, प्रेम जोशी पॉडकास्ट. हम बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस करते हैं सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के साथ. लॉ, इमिग्रेशन, हेल्थ, एस्ट्रोलॉजी, साइकाइट्रिस्ट, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हम सभी से बात करते हैं यार. एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो लोगों के पर्सपेक्टिव्स है, बिकॉज दे ऑल आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर अस इमिग्रेंट्स हु लिव इन अमेरिका. सो डू फॉलो अस एट प्रेम जोशी पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड फेसबुक. नेक्स्ट गाना हमें पंकज जी ने रेकमेंड किया है, आफरीन आफरीन. अगेन वन अनदर another song from Coke Studio. But wo song sunne ke pehle I do want to mention about Omar Khwaja. If you're unfortunately involved in a car or truck accident, I hope that never happens to anybody who's listening to me right now. But of course, if you're in that unfortunate event, or if it's a slip or fall incident as well, attorney Omar Khwaja will fight your case and help you get the compensation that you deserve. Dealing with insurance companies can be stressful. You need an attorney that will make sure you are compensated. You don't pay until you win. For a free consultation, call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. Next gana, Afreen Afreen, recommended by Pankaj ji. Here we go.
1: Coke Studio Season 9.

All right, ladies and gentlemen, welcome back. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. वैसे वक्त हो चुका है हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज खेलने का. जी हाँ, वैसे हम बोलते हैं ये वर्ल्ड फेमस, बट सिर्फ ये हमारे DFW में ही चल रहा है. बट इट्स काइंड ऑफ वेरी फेमस नाउ नाउडेज यार, बिकॉज एवरीबॉडी इज वेटिंग टू प्ले दिस, नॉट जस्ट फॉर द गिव अवे. ऑब्वियसली द गिव अवे इज अमेजिंग. द स्पॉन्सर्स जो जिनकी वजह से हम ये खेल पा रहे हैं इज none other than the Flavor Lounge. It's one of the most amazing restaurants in our DFW area. It's on Preston Road in Frisco. Ekdam prime location pe hai ye restaurant. To agar aapne unhe abhi tak try nahi kiya hai, I'm giving you the chance to do it, because jo bhi mere saath ye Bollywood quiz khelega use mauka milega दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का at the Flavor Lounge. जी हाँ, either if you're a vegetarian you can go for dal makhni, if you prefer non-vegetarian you can also go for the chicken curry. So yes, let's play that Bollywood quiz after this song. I will give you the questions and I will give you the option to call me. Make sure to know this, note this down, because we are going to play this live on air. Theek hai, to pehle se call mat kar dijiyega, jab main bolu tab call karna. 972-235-5555 is the studio ka number. Main number ye wapas bataunga is gaane ke baad. Theek hai.

0: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम। वक्त हो चुका है हमारा बॉलीवुड क्विज खेलने का, तो फोन हाथ में रख के, और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फोन हाथ में मत लीजिए यार, आपके जो पैसेंजर हैं उन्हें बताइए, बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट, क्विज बाद में। Hands always on the wheel and eyes on the road when you're driving, right? But of course, if you have Bluetooth, CarPlay, Apple Play, Android Play, then of course you can play with us. 972-235-5555 is the studio ka number. Call kijiye hume aur main aapko question puchunga fat fat live on the air, aur jo bhi sabse pehle hume jawab dega, sahi jawab dega, usse milega ye giveaway from the Flavor Lounge in Frisco on Preston Road. So call us and we will play live on the air.
1: You're back. You've been here before, haven't you?
0: लगता है हमें और एक कॉलर मिल चुका है। Hi, who is this? Hi, can you hear us?
2: Yes, I can hear you. Can you hear me?
0: Yes, sir, I can hear you. आपका नाम बताइए।
2: नीलेश।
0: नीलेश जी, आपने बॉलीवुड क्विज खेलने के लिए फोन किया है हमारे साथ?
2: जी सर।
0: ओके, ऑसम ऑसम। ऑल राइट, तो मैं फट चालू कर देता हूँ यार, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ मैं। सो जल्दी से मैं बता देता हूँ, तीन सवाल मैं पूछूंगा आपको, ओके? तो तीन सवाल के होंगे तीन आसान जवाब। तो हम आज है ना थोड़ा रणवीर सिंह स्पेशल खेल रहे हैं, क्योंकि रणवीर सिंह अभी हो चुके हैं हमारे सुपरस्टार बिकॉज ऑफ धुरंधर मूवीज। क्या बढ़िया काम किया है यार, तो उनके मूवीज के रिलेटेड है। आई होप यू हैव सीन ऑल हिज मूवीज। ओके,
2: यस सर।
0: ओके, तो ये डायलॉग ये उनके कौन से मूवी का है? अपना टाइम आएगा। ये कौन
2: सी? गली बॉय।
0: गली बॉय, ऑसम ऑसम ऑसम। ऑलराइट, नेक्स्ट वन। आप हमें बोलेंगे कि खिलजी के पास दिल नहीं है सिर्फ जुनून है, ये कौन से मूवी का डायलॉग है उनके?
2: पद्मावत। पद्मावत,
0: वेरी
2: अलाउद्दीन खिलजी।
0: वेरी गुड यार, मैं थोड़ा टफ कर दूं क्या यार? तुम बहुत फटाफट जवाब दे रहे हो यार।
2: नहीं, थोड़ा आसान ही चलेगा।
0: ओके, ठीक है ठीक है, चलो थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत ईजी हो रहा है यार। तो एक एक सवाल और करते हैं। एक्चुअली ये भी इजी है आपके लिए भी। मैं पुलिस वाला बना हूँ चोरों को पकड़ने के लिए, उनका भाई बनने के लिए नहीं, ये कौन सी मूवी का डायलॉग है उनके?
2: सिंघम, सॉरी सिम्बा, सिम्बा, सिम्बा।
0: अरे यार, जस्ट बच गए यार, एकदम से तुमने फटाक से सिम्बा डाल दिया बीच में, नहीं तो सिंघम से मैं बोलने वाला था।
2: मिक्सअप हो गया थोड़ा सा।
0: कोई बात नहीं यार, इतना तो छूट दे सकते हैं, संडे इवनिंग है, क्या बोलते हो?
2: थैंक यू।
0: यस, ऑल राइट, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द विनर ऑफ दिस वीक्स बॉलीवुड क्विज। सो मेक श्योर यू प्लीज स्टे ऑनलाइन, क्योंकि आपके डिटेल्स लूंगा मैं ऑफ एयर, बाकी सबको आपका नंबर और नाम पता नहीं चलना चाहिए, क्या बोलते हो? कि नहीं तो सब आपको फोन करेंगे।
2: थैंक यू।
0: ओके, तो मैं आपका डिटेल्स देता हूँ और हम गाने बजाएंगे सभी और के लिए। राइट, थैंक यू।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe.
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: Astrology readings for guidance only and results may vary.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
11: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
12: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

2026 जैस्मिन सैंडलेस के नाम हो चुका है यार, क्या बैक टू बैक उन्होंने हिट्स दिए एंड शी इज डूइंग कॉन्सर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. आई मीन ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे रील्स में जैस्मिन ही जैस्मिन है. एंड व्हाई नॉट, व्हाट अ पावर हाउस, व्हाट अ टैलेंट. जाइए सजना, एंड कितने सारे और गाने उन्होंने धुरंधर के गाए. शी इज फैंटेबुलस. आई कैन नॉट वेट to watch what she does in the future. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. Ho gaya hai khatam hamara segment jahan pe hum bajate the pop gaane. Thank you to 25 amazing folks who recommended us so many amazing songs. You guys are the best. Please make sure to understand this. Jo bhi hum gaane bajate, 85% and 90% of the time are the songs recommended by our amazing, amazing listeners. So if you want to be part of it, let us know, yaar. Call us, follow us on Instagram, and let us know your song. DMs are always open. We give a shout out if it's your birthday, if it's your wedding anniversary, if it's a celebration. We want to be part of your happiness, right? Jitna aap happiness ko phailayenge, utna double triple hote jayega. 972-235-5555. And you can follow me on Instagram at Prem Joshi Podcast. PremJoshi Podcast. Next song is Just Chill, Chill, Just Chill. वक्त हो चुका है हमारा blockbuster segment जहाँ पे हम गाने बजाते हैं सारे blockbuster songs from the blockbuster movies. So yeah, first song of the hour, Just Chill.

Sung by Sonu Nigam, Jayesh Gandhi, Amrita Kak, and of course, music director, apda favorite, Himesh Reshamya, ne kya zabardast music diya hai, yaar. Is pure movie ke sare songs are super duper hit. Next gana hai, oh, wow, Priyanka has recommended us an amazing song, Ding Dong Ding Dole, aur logo, ye nahi generation ko main kya batau, yaar, ye gana itna hit gaya tha, Channel V aur MTV pe. ये मूवी तो मैंने नहीं देखी है, द मूवी इज कॉल्ड कुछ तो है, बट दिस सॉन्ग वॉज एन अल्टीमेट बैंगर सॉन्ग बैक. इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 ईयर्स सिंस दिस सॉन्ग हैज लॉन्च, बट इट स्टिल फील सो फ्रेश. लेडीज एंड जर्मन, वेलकम बैक. इफ यू हैव सॉन्ग्स लाइक हैज लाइक प्रियंका हैज सजेस्टेड, लेट अस नो. 972-235-5555. ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, प्रेम जोशी पॉडकास्ट.

सोने से तुझे सजाऊं से मुझे याद आया, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स यहीं पे है। लेडीज एंड जेंटलमैन, शाइन ब्राइट विद डायमंड्स विद मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स, डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर देन स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट। फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, द डायमंड कलेक्शन ब्लेंड्स सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन, परफेक्ट फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज और जस्ट celebrating love. Download the mobile app right now for more details. Malabar Gold and Diamonds. Back to back जबरदस्त गाने आ रहे हैं, ये सारे गाने हमें Instagram पे DM आ रहे हैं लोगों के, लोग मुझे DM कर रहे हैं, हर सर जी हम इंडियन ग्रोसरी स्टोर से घर आ रहे हैं और आपके शो सुन रहे हैं, सो थैंक यू सो मच, ये लो ये गाना प्ले कर दो। तो बैक टू बैक रिक्वेस्ट नॉट ओनली ऑन आर स्टूडियो लाइन बट ऑल्सो ऑन आर Instagram, सो वट एवर वर्क्स फॉर यू लेट अस नो एंड वी विल प्ले देम लाइव ऑन द एयर। Prem Joshi Podcast, PremJoshi Podcast. You can follow us on Instagram, Facebook, and YouTube, where we talk to subject matter experts from law, legal, immigration, health, diet, nutrition, psychiatrist, astrologer, Indian matchmaker. Hum sabhi se baat karte hain. Jo sare hum topics are very close to our hearts and close to our lives. We talk to everybody. Prem Joshi Podcast. And of course, studio ka number hai 972-235-5555.

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
2: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft paneer cubes soaking up every bit of that spicy magic all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
3: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gra Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai, and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: बहुत खूबसूरत यादें थी, पर अब बस वो लम्हा याद आता है जब वो जा रही थी।
1: मैं भगवान से प्रे करूंगा कि सिमरन तुझे किस करे। यू नो आई जस्ट लव व्हेन दो लड़कियां

बैक टू बैक टू बैक अमेजिंग सॉन्ग्स लेडीज एंड जेंटलमैन. सारे सॉन्ग्स हमें डीएम आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे. मैंने जितने हो सके उतने सभी लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड किया. काफ़ी लोगों के कॉल्स भी आए. सो आई ट्राई टू फिट इन एज मेनी सॉन्ग रिक्वेस्ट एज आई कैन. बट ऑफकोर्स द शो एंड्स एट 10 PM, सो we can only do some limited songs, but please keep them coming, ladies and gentlemen. We'll try to do as much as we can. Next song hame recommend kiya hai Ranjana ne. It's a beautiful song, Duriyan, from Love Aajkal.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
3: अरे सारे तो सेम है.
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
3: ओ हाँ, ये तो अलग है.
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
6: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. मेंशन फनेजिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस. Call Ambreen at 214-909-6601
4: or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
6: Ambreen Salon, style that moves with you.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
11: Hello, hello guys. Main hoon Snigdha and you're listening to Dil Se Dallas on Fun Asia 104.9 FM par. So, Sunday night, matlab officially wo moment jab aap decide karte ho, life hai sorted. Aur fir Monday आके कहता है देखते हैं. सो आज का वाइब सिंपल है, नो ओवरथिंकिंग, नो हैवी ज्ञान, बस थोड़ा चिल, थोड़ा रियल टॉक और थोड़ा सा इट्स ओके नॉट टू हैव इट ऑल फिगर्ड आउट.

तो अभी आप ड्राइव कर रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, या बस ब्लैंक स्टेयर मार रहे हो सीलिंग को? स्टे विथ मी, लेट्स मेक द नाइट फील थोड़ा सा बेटर फॉर यू ऑल गाइस।

कन्फेशन टाइम, संडे नाइट्स पे मोटिवेशन का ना अलग ही लेवल की पीक होती है. यूट्यूब खोल के 5 AM रूटीन, हाउ टू फिक्स लाइफ, सब देख लिया. और मंडे मॉर्निंग अलार्म बजता है और हम आज नहीं यार. और सबसे फनी पार्ट पता है क्या है, हम प्लान इतना करते हैं कि प्लान करते करते ही थक जाते हैं. एंड यू नो व्हाट इज अ जेन ज़ी रूल गाइस, ओवरथिंक एवरीथिंग, एग्जीक्यूट सिलेक्टिवली. बट ऑनेस्टली थोड़ा सा भी कर लिया ना, दैट्स ऑल, दैट्स स्टिल अ प्रोग्रेस. एंड वी आर गुड इवन इफ यू आर प्रोग्रेसिंग अ लिटिल बिट.

सच बताओ, कितने लोग मेंटली अलार्म स्नूज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और कितने लोग सोच रहे हैं कल से डाइट पक्का। हाँ, वो कल आज कभी नहीं आती है। लेकिन यार, अब्रॉड लाइफ का कुछ अपना ही सीन है। संडे का मतलब इंडिया में होता था फैमिली लंच, थोड़ी सी डांट, थोड़ी सी प्यार, और यहाँ लॉन्ड्री, ग्रॉसरीज, मील प्रेप के नाम पे 3 दिन तक वही राजमा चावल। बट इट्स ओके, संडे इज अ लिटिल आबाद, मंडे इज अ लिटिल बर्बाद विथ इट्स ओन फन एंड इट्स ओन ट्विस्ट। सो फॉर टुमारो हैप्पी मंडे एंड फॉर टुडे हैप्पी संडे नाइट।

was a cool song starring Kiara Advani, Hrithik Roshan. So, agar aap abhi bhi phone haath mein leke last reel bol ke 20th reel dekh rahe ho na, I see you guys. Aaj ka ek random sa thought batao. Hum sabko life mein clarity chahiye. But, pata hai meri clarity kaisi chalti hai? I guess all of them, sabki aisi chalti hogi. Netflix पे 20 minutes लग जाते हैं decide करने में कि क्या देखना है और फिर end में कुछ भी नहीं देखते. Maybe life भी ऐसी है ना. We don't always need perfect choices. But कुछ कुछ की चीज़ें ऐसे ही choose कर लेना है which makes you happy. So आपकी reels लंबिया के लिए मैं एक राता लंबिया की गाना लगा रही हूँ.

आई विश मंडे इतनी जल्दी ना आ जाती गाइस, बट यू नो व्हाट, मैं एक अडल्टिंग टिप, लाइक अडल्टिंग टिप या अडल्टिंग अपडेट बताऊँ, आज का बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है पता है? खाना टाइम पे हुआ या नहीं खाया, बट एटलीस्ट सोचा तो, और साथ में बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और वो ही कॉन्स्टेंट थॉट्स, वीकेंड हो गया, वीकेंड आ गया, और सच बोलू किसी को ना लाइफ में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, ये सही है ये गलत है, सब लोग थोड़ा गैस, थोड़ा जगल, थोड़ा प्रिटेंड कर रहे होते, क्योंकि मैं तो वही करती हूँ, आई थिंक मोस्ट ऑफ अस डू दिस सेम थिंग, और बीच बीच में मीम शेयर करके सर्वाइव कर रहे हैं. सो रिलैक्स, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक. सो मंडे हो या संडे, ऑलवेज बी हैप्पी, कूल एंड फन.

एक क्विक सा रिमाइंडर दूँ, बस गाना शानदार नहीं, इवन द लाइफ हैज़ टू बी शानदार. एंड द क्विक रिमाइंडर इज, अगर यू नो व्हाट, लाइक आपका जर्नी किसी और के टाइमलाइन पे रन नहीं कर रहा है, कोई फास्ट मूव कर रहा है, कोई स्लो मूव कर रहा है, किसी को पता भी नहीं है कि करना क्या है, किसी को तो बिल्कुल भी नहीं. बट यू नो व्हाट, गेस व्हाट, दोनों नॉर्मल है. सोशल मीडिया हाईलाइट रील होता है, रियल लाइफ का सीन्स बिहाइंड द सीन्स होता है. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस अग्री दैट दिस इज ट्रू? देयर इज ऑलवेज बीटीएस टू आवर ओन लाइफ, नॉट जस्ट सोशल मीडिया गाइस. तो अगर आप फिगर आउट फेज में हो ना, यू आर एक्चुअली ऑन राइट ट्रैक, क्योंकि फिगरिंग आउट में ही हम बहुत कुछ जान सकते हैं. मैं ये करूँ, ये ना करूँ, पर करके देखूँ, अगर मैं फेल हो गई तो, बट इट्स स्टिल फाइन, यू आर ट्राइंग आउट. लाइफ ऐसी ही होती है, सब प्लान्ड, सब सीधा ही चलना ज़रूरी नहीं होता. कभी कभी ना हम टेढ़ा भी चल सकते हैं और बेफिक्र भी होके खुल के जी सकते हैं.

11:20 PM एंड आई नो आपकी टाइमलाइंस भी मीट हो जाएंगे, आपकी डेडलाइंस भी हो जाएगी, बस रात की वाइब जारी रखो.

0: Stretch, guys. I know. It's getting late and we're almost hitting 11:30 p.m. So Monday मोटिवेशन का सीन चल रहा है दिमाग में या मंडे कैंसिलेशन का सीन चल रहा है? अगर मोटिवेशन सीन्स हो तो कॉल अस टू द स्टूडियो एट 972-235-5555 पर. अगर कैंसिलेशन का मूड हो तो कॉल कीजिए हमें एंड शेयर योर मंडे मोटिवेशंस एंड कैंसिलेशंस. स्टे ट्यून्ड गाइस, आप सुन रहे हो फन एशिया 104.9 FM पर, दिल से डैलस विद स्निग्धा. आई होप आई एम वाइबिंग योर नाइट. और आपको अगर रील्स के साथ बोर हो रहा है आप
1: यार मैं थक चुकी हूँ. पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं. मेरे से नहीं होगा ये.
2: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं. बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है. सिंपल.
1: मतलब
2: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में. और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर. चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो, या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस, फन पिज्जा एट कॉलोनी.
3: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन.
4: Dallas, are you ready? Jabu Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.

यू नो वॉट, मेरी भी दिल सिंपल सादा सीधा, बट मैं तो हर रोज़ लो चाय उल्फत ही कर देती हूँ, बिकॉज आई गेस लाइफ ना ऐसी ही होनी चाहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं. अच्छा मुझे ये करना है वो करना है, नहीं मैं कुछ भी कर लेती हूँ, बट उसमें बहुत सारा मज़ा भी करती हूँ, एंड इट मेक्स मी फील ऐसी ही होनी चाहिए यार लाइफ. लाइफ के बारे में मैं कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेके मैं क्या ही कर लूँगी, मुझे बस अच्छे से यादें बनाना है, एंड इट शुड ऑलवेज बी लाइक फन फैक्टर जैसी रहनी है, सो दैट यू कैन ऑलवेज रिमेंबर योर 20s एंड योर 30s. एज की ना कुछ नहीं होती है, ये एज में ये करना चाहिए, वो एज में ये वो करना चाहिए. इट्स जस्ट वट एवर विच एवर एज यू आर इन, जस्ट मेक श्योर यू हैव दैट लिटिल फन मोमेंट्स जो आपको हमेशा जब याद आए तो आपकी चेहरे पर एक मुस्कान सा आ जाए.

It was Roop Di Rani. It's from Pati Patni Aur Wo Do, starring Ayushmann Khurrana, Sara Ali Khan, Rakulpreet Singh, and Bhumika Gabbi. How much I know, Ayushmann Khurrana ना romantic movies करता है बस एक लड़की को पाने के लिए. But अभी ये movie में ना ये तीन लड़कियों को कैसे संभालेगा ये तो देखना ही है. तो ये release हो रही है May 15th को, सो जाइए और देखिए. Have some fun watching this romantic comedy.

It's 11:45 PM for you guys. Okay, अब Sunday officially wrap हो रहा है. अगर आपकी mind में ना अभी भी overthink mode में हो ना, मैंने तो बहुत vibe करवाया है आपको, but आप अभी भी अगर overthinking mode में है, तो मैं कुछ आपको बता दूँ, थोड़ा सो pause ले लो. सब कुछ आज ही solve करने की ज़रूरत नहीं है. कभी-कभी बस day complete करना भी enough होता है. और हाँ, कल का स्ट्रेस आज मत कैरी ऑन करो, मंडे खुद ही आ जाएगा. और आपका स्ट्रेस सुबह कॉफ़ी का हेल्प करेगी और शाम में चाय हेल्प करेगी, ज़्यादा मत सोचो.

You're listening to Dil Se Dallas with Snigdha on Phoenicia 104.9 FM पर. So, before we close, एक simple सा thought आया था मुझे. Life को overnight perfect बनाने की pressure ना मत लो. I know everybody around Dallas, especially जो भी masters के लिए आए हो, वो बस pressure लेते, tensions लेते, क्या करूँ यार, मैं कब settle होऊँगा. It's not necessary हर रोज़ pressure रखना, बस आपने थोड़ा सा भी better बना लिया ना, it's good. एक person भी काफ़ी है, बाकी सब चाय, music और थोड़ा सा humor, सब handle कर लेंगे.

मैं हूँ स्निग्धा और ये था दिल से डैलस ऑन फनीशिया 104.9 FM पर। आज की रात अगर थोड़ी सी भी लाइटर फील हुई तो मेरी मिशन अकम्प्लिश्ड है। स्टे रियल, स्टे थोड़ा इम्परफेक्ट, क्योंकि वही एक्चुअली इंटरेस्टिंग होता है। गुड नाइट, और हाँ अलार्म लगा लो क्योंकि कल सुबह मंडे है गाइज़।

0: पटक मटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए Come on baby kick it kick it काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो

0: वाला सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: शानी
1: बोल बचन का कतरा
0: खतरा
1: बोल बचन की भाषा
0: झांसा।

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा, खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: कहीं पे वो नलके की टप टप है।
1: कहीं पे वो खाली

0: जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, जब शहर हमारा सोता है, हो हो हो हो।
1: 104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, Pure Fact Desi.

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: Make some noise for the Dicey Boys!

0: Chunka?
1: बोरिंग दिन चरिया में
2: घोलिए नए रंग फनेजिया रेडियो के संग

Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: tracks that put you on the right track.
1: मुझे नहीं पता हमारे बीच कब क्या गलत हो गया, सब खत्म क्यों और कैसे हो गया।

0: क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
2: Hi guys, this is Tiger Shroff. Enjoy Fun Asia Radio.

0: ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਾ ਲੈ ਲਾ
1: ਮਰ ਜਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਭੰਗੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੀਡ
2: अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है
3: पनवेल हो या डेलस सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: Marshmallow.
1: नाम तो सुना होगा.
2: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
3: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी बजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
4: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
5: आज रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।

डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनेश।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।

0: the heartbeat of Dallas. Fun Issue Radio, 104.9 FM.
1: Adeo Mona Lisa!

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: जिंदगी के कई रंग फनीशा रेडियो के संग।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
3: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है, पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 8682364611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
5: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया। फन एशिया।
2: म्यूजिक एमजी। तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं,
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
4: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस।
5: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
6: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
5: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
6: वेट, व्हाट?
7: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
7: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me? It's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
5: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
11: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
5: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
12: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
13: इन प्लेनो।
12: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: Yeah, this is Shakti Kapoor and you guys are listening to me on the Fun Asia Radio.

0: Vows to shrink America's military deployment in Germany and has put a new spotlight on the U.S. role in Europe. There are usually 80 to 100,000 troops on the continent, with more than 36,000 in Germany. And the Pentagon announced it would remove 5,000 troops from Germany. And President Trump said the next day that he would go a lot further than that. Two U.S. soldiers that disappeared while on a training deployment in southern Morocco were last seen near seaside cliffs and may have fallen into the ocean. A massive land, air and sea search launched by U.S., Moroccan and allied forces in Cap Dra training area after the service members went missing. The search remains underway. Three people have died and three ill after a Netherlands-based cruise ship was hit by a suspected outbreak of hantavirus, a rodent-borne virus that can cause fatal respiratory illness. Netherlands-based Oceanwide Expedition said in a news release it was managing a serious medical situation on a polar expedition ship, the MV Hondius, which was off Cape Verde, an island nation in the Atlantic west of Africa. And three people have died after this outbreak on the ship. President Putin is losing the Russian people as the economy and his war machine go in reverse amid withering Ukrainian attacks. We will have more news for you, and let's get that to you in the next hour of the program. Stay with us right here.
1: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
3: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
4: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
5: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
6: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
7: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा है.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम.
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग.
10: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
13: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
12: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
13: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
14: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह answers ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. Connect with Anita Chundru at The Colony, Texas. Chart reading, Vedic astrology, numerology aur Havan services se mile sahi guidance. Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
5: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
15: I've been researching retirement planning.
16: Oh, really? Where?
15: Google, YouTube, a guy on TikTok.
16: Or you could just talk to Wealth Active.
15: What?

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
8: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
9: सब कुछ साफ रख सकते हो
10: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती कोई नहीं सोचता मेरे बारे में
11: क्योंकि ये कौन बोला
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट जिसमें है डस्ट पोलन एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है मेरा तो साफ ही होगा तो आप सही नहीं सोच रहे हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें मुझे भी साफ करना होता है मेरा काम था बताना अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा आपको क्या चाहिए
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है कॉल जीतू पटेल 972-877-2500
13: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
14: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी
13: K2 ड्राइव मतलब
14: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है
13: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
14: 100%
15: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Cato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
8: 3 minutes. That's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
16: यार मैं थक चुकी हूँ पार्टी के पहले सफाई फिर पार्टी बाद में सफाई ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं मेरे से नहीं होगा ये
17: अरे यार बोला ना लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं बताया ना जहाँ पार्टी है वहीं खाना है जहाँ खाना है वहीं पार्टी है सिंपल
16: मतलब
17: देख जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है अब खुल के पार्टीज कर चाहे क्रिसमस हो थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे नाम याद रख बस फन पिज्जा एट कॉलोनी
8: विजिट फन पिज्जा किचन FPK एट कॉलोनी इज नाउ ओपन फॉर डाइन इन आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी डायग्नोसिस क्लियर है आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एजी फिनटैक्स फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी From taxes to CFO advisory, business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
18: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.
19: May the 4th be with you today on this 4th of May. It's a Monday morning and we are getting ready
9: to start this week for all of you. We are in the 60s right now, should be in the 80s a little bit later. And we see storms tomorrow after 5 p.m. We will keep you updated here about these. Today they are in Oklahoma and they should be, looks like they should be on us sometime tomorrow. Right now it looks like after 5 p.m.

0: cancer. Federal Planning and Development Minister Ehsan Iqbal has convened a meeting of the authorities concerned in Islamabad to review the situation created by a Chinese company's sudden announcement of closing all its operations in Pakistan and China, as well as the factory in Gwadar. Tremors were felt in Islamabad and Rawalpindi this morning after a 5.2 magnitude earthquake was reported, and the Islamabad High Court rejected the petitions of former Prime Minister Imran Khan and his spouse Bushra Bibi, seeking the suspension of their sentences in the £190 million corruption case, observing that their main appeals were already fixed for hearing. And Bushra Bibi's daughter is seeking access to her mother, as Imran's sister Alima Khanum has posted that the family had appealed to all party office holders and senators to come to the Adiyala jail tomorrow to build pressure on the government for access to the former.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो हैं. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
5: डूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोल्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
3: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
7: Astrology readings for guidance only and results may vary.
8: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
9: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
10: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
9: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
10: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
11: एन एक्सीडेंट चेंज्ड माय लाइफ ओवरनाइट. द पेन मेड इवन सिंपल थिंग्स हार्ड एंड टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली फेल्ट इम्पॉसिबल. आई वाज स्ट्रेस्ड, स्केर्ड एंड डिडंट नो वे टू टर्न. लकीली आई फाउंड ओमर क्वाजा एंड टीम. They listened, treated me with respect, and explained everything clearly. They stood by me every step of the way. If you have been injured in an accident, you don't have to face it alone. Call the law offices of Omar Khwaja today. Because of them, my family and I can finally move forward.
3: Call now to 833-GET-OMAR. The law offices of Omar Khwaja. Your rights, their responsibility.
2: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
13: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
14: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
13: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
14: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
15: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

0: It is 9 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Full Bollywood Dhamaka, Fun Asia Pe!
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
7: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
8: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
9: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
8: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
10: इनएफिशिएंट मैन,
11: वेरी कॉम्प्लेक्स,
10: क्लमजी होए,
11: अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अबे
12: डिसजॉइंटेड सॉफ्टवेयर को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं। टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ, अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. कामनिक सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
13: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
14: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी। तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
15: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
16: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
17: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
18: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gra Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. biggest India property expo by My Square Feet.
19: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Ladies and gentlemen, welcome to this final hour of our program. If you are just joining us, do receive my very, very warm welcome to the show. On this Monday morning, we're getting this week started for you. And it is the 4th of May. So happy Star Wars Day. May the 4th, the day of the Force being with you, annually marked by the celebration for George Lucas's magnum opus franchise. And that is, of course, Star Wars. We have our wish today that may the Force be with you. I'll be talking more in detail about that when we do stories from the annals of history. And let's do that at 9:45.

0: £1 million corruption case, observing that their main appeals were already fixed for hearing. Bushra Bibi's daughter is seeking access to her mother. And meanwhile, Imran's sister, Alima Khanum, has posted that the family had appealed to all party office holders, senior leadership, MPAs, MNAs and senators to come to the Adiala jail tomorrow to build pressure on the government for access to the former prime minister. That's all I have in the news.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving. Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com. Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
3: Excuse me? It's called being loyal.
2: It's called being predictable.
3: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
2: And what's so special at Neon Cactus?
3: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabiha halal options and plenty of great vegetarian choices too.
2: Not bad.
3: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
2: Okay, this I didn't expect from you.
3: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500।
8: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
9: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है।
8: रोज का सेम प्रॉब्लम।
10: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहाँ बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
11: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13। कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
12: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
13: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फाइनेंशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
14: Are you looking to own a global restaurant brand? Jai Bhavani, an established brand from India, born in Gujarat, is expanding across Texas. We hold the exclusive franchise rights for Texas and are inviting motivated entrepreneurs to join us in partnership with a leading hospitality group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
15: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.
16: Hi everyone, this is Shalini Kodial, CPA. Here is your quick tax planning tip. You should always plan for capital gains. If you have investments, consider the timing of sales. Holding assets for more than a year may qualify you for lower long-term capital gain tax rates. To learn more about it, please reach out at 281-760-5573 or book a complimentary consultation at skodialcpa.com.

कल परसों थोड़ी बारिश के चांसेस वापस आ सकती हैं एंड इट इज नॉट 100% कवरेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. देयर विल बी एरियाज जिन्हें बारिश और थंडरस्टॉर्म्स मिल सकती हैं. इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और आज का जो टेम्परेचर है, वेदर है, सारा कुछ वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेगमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. दिस इज गपशप गली विथ मी टू लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अ बिग शाउट आउट टू एवरीबॉडी हु turned up for the Jam Lounge event which happened on Friday, May 1st. और हमारा पहला बॉलीवुड जैम सेशन जो हमने दिल से किया और मेरे ख्याल से दिल तक पहुँचा. It was fab, ladies and gentlemen, to jam with all of you who were there. And it was a full house, as I told you before, brought to you by Funisha Network. और Dallas का पहला jamming बॉलीवुड सेशन was a true success. We're going to make it bigger and better for you all the next time.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
3: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है.
4: प्लान या होप?
3: मतलब?
4: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
3: ओके, तो मेरा वाला होप है.
4: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
3: क्यों?
4: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
5: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट wealthtactic.com.
6: यार मैं थक चुकी हूँ. पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई. ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं. मेरे से नहीं होगा ये.
7: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं. बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है. सिंपल.
6: मतलब?
7: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए और वो भी सिर्फ $250 में. और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वहीं ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है. अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस. Fun Pizza at Colony.
5: Visit Fun Pizza Kitchen. FPK at Colony is now open for dine-in. If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
8: Oh, haseena zulfon wale jaane jahan.
9: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए. बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट. बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस. Mention Funasia and get 10% off on your hairstyle service. Call Amreen at 214-909-6601.
5: Or visit their Instagram, Amreen Salon, located at Allen and Frisco.
9: Amreen Salon. Style that moves with you.
10: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
11: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
10: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
11: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
5: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-0948. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
12: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेशिया रेडियो.

0: Thank you once again for tuning into Funasia Radio 104.9 FM. This is Gupshup Gali with me too. और हमारी इस segment में गपशप से कहीं ज्यादा बातें होती हैं. It is about the insight that you get about the mortgage world. Brought to you by Dream Home Mortgage. जरूर याद रखें to get into the website and find out about all their services. DreamHomeMortgage.com is the website. 972-245-5626 is the number to get in touch with the one and the only Mr. Hussain Panjwani, ladies and gentlemen. और उनकी team बहुत खास है. And इनके साथ जुड़े 27 years of experience ऐसे ही नहीं होता. It speaks volumes about their work in the community. तो अगर आप डैलस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्रिक्स में रहते हैं और आपको पता ही होगा फिर इन दैट केस कि भाई रियल एस्टेट मार्केट कितना कितना यहाँ पे तगड़ा है. और यहाँ पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रियल एस्टेट के अलावा भी देर इज प्लेंटी अदर थिंग्स दैट वी आर वरीड अबाउट. देर इज द पेपर वर्क, देर इज एवरीथिंग रिलेटेड टू ए मोर्टगेज दैट यू नो adds that stress to our even thinking that route. So बस यहीं पे हुसैन साहब की जो है हम यहाँ पे advices और tips जो लेकर आते हैं. And it is very, very insightful segment for all those thinking of that investment property, thinking about, refinancing and cash out, all of that, you know. So let's get him on the air. और फिर एक बार याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई भी सवाल हो info@dreamhomemortgage.com पे ज़रूर भेजें and get in touch with them and find out the ways they can help you. Thank you so much for your time. Every Monday morning 10:30 बजे आपके साथ हमारी जो बातचीत होती है, it has been so helpful to me and I'm sure to our listeners as well. Thank you for your time, Hussain Saab.
1: It's always, always a pleasure talking to you and thank you. आप time निकाल के हमें you call me diligently so we can talk and share whatever the news is. Try to help as many people as possible.
0: Absolutely.
1: So it's a two-way street.
0: Absolutely, my pleasure, हुसैन साहब. Seriously, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैं आपकी बातों से, आपके एडवाइस टिप्स से. बहुत सारी चीज़ें सिंप्लीफाई जो आप कर देते हैं हमारे लिए एंड ट्रांसपेरेंट वे में जो आप प्रेजेंट करते हो, दैट इज़ आई एम श्योर वेरी वेरी हेल्पफुल टू आर लिसनर्स एज वेल. तो हमने पिछले मंडे को वी टॉक्ड अबाउट यू नो होम बायर्स एंड फर्स्ट टाइम होम बायर्स. बहुत कुछ चीज़ें हमने उस बारे में कवर की. तो मुझे लगा कि आज हम कुछ रीफाइनेंस के बारे में बात करें. हाउ अबाउट दैट?
1: Yes, definitely. But पहले हम हमेशा एक हाईलाइट करेंगे होम बायर्स, बिकॉज आवर गोल इज टू मैक्सिमाइज एंड रिगार्डलेस आई होप ऑल ऑफ देम यूज ड्रीम होम. व्हाई नॉट? वी बीन डूइंग दिस नाउ फॉर नाउ. दिस इज आवर 28th ईयर इन बिजनेस. वी स्टार्टेड दिस इन 1997. तो इन अक्टूबर विल कंप्लीट 29 ईयर्स ऑफ बीइंग इन द मॉर्गेज बिजनेस. सो फर्स्ट टाइम होम बायर्स, पीपल हु आर स्टिल renting, and those of you who have been renting for 4, 5, 6 years, honestly, I really fail to understand why are you still renting. Agar aapki job security hai, you know you want to settle down, wherever you are in Dallas, Texas, you are in Oklahoma, you are in New Jersey, New York, wherever you want to settle, wherever you are, and you've been living there for 4, 5 years, why are you still renting? You should, in this country, if you plan, it might take a year. Sometimes you had bad credit, aap student the, ya bad marriage thi, jo bhi reason tha, unfortunately, ya health reason tha, aapki credit kharab ho gaye. So after that, you can, you know, recoup and start, build your credit. Within 2-3 years, you can buy a house with 5%, 10% down and move into your own home. And I honestly, honestly, sincerely believe that every family should own their own home.
0: नहीं, एब्सोल्यूटली. और अगर मैं मानती हूँ कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई हेजिटेशन हो, जो बिग वरीज होती हैं कई बार एक इतने बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए, गो आउट एंड रीच मिस्टर हुसैन पंजवानी एंड टीम एंड जस्ट फाइंड आउट कि आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, किस तरह से आप चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो डू यू गेट कॉल्स लाइक दैट कि जहाँ पे
1: ऑल द टाइम, ऑल द टाइम. आई वाज ऑन वेकेशन लास्ट वीकेंड, दैट्स व्हाई वी वर टॉकिंग टू पीपल एंड समटाइम्स दे विल कॉल मी, दे आर स्टक विद द बिल्डर फॉर व्हाटएवर रीजन, या बिल्डर उनको राइट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है. Or they ask me all the time, is it a good time? Or we had bad credit. I'm currently working with 3-4 clients right now as we speak, where we are building their credit and hopefully will be starting their loan process next month, probably in the month of June. We are expecting their credit score to go above 640, 660, so they can get a better interest rate. So we work with clients all the time. We'll advise them, do this, do that, pay this off, and then hopefully within 60, 90 days, we are able to start their loan process.
0: So this is clearly something that only professionals can help with, professionals like you can help with. So if a bad credit score ho, to bhi approach kare and find out how you can help them to come out of the situation, right?
1: जैसा हम कहते हैं रास्ता थोड़ा मुश्किल होता है कठिन होता है लेकिन नामुमकिन नहीं होता है. You know, it's always difficult, but we can achieve the goal slowly but surely.
0: Absolutely.
1: And we do it all the time.
0: So once again to my listeners, the number to call is 972-245-5626. DreamHomeMortgage.com is the website that you should go and find out more. यहाँ पे कैश आउट के बारे में मैं थोड़ा ना कॉन्सेप्ट अपना भी थोड़ा समझना चाहती हूँ. बहुत अगर आप हमें थोड़ा क्लैरिटी के साथ बताएंगे कि ये मतलब क्या बला होती है, ये कैश आउट चीज़ क्या होती है, when we say कैश आउट, refinance, what is all of that?
1: पहली बात, एक मिसकंसेप्शन है कि कैश आउट इज द सेम थिंग एज डेट कंसोलिडेशन. टू डिफरेंट थिंग्स एंड आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद स्पेशली आजकल हम हर चीज के लिए हम जाके इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं. सो मेक श्योर यू एक्चुअली वॉन्ट टू गेट इन टू डेट कंसोलिडेशन और इफ यू आर अ होम ओनर यू वॉन्ट टू गेट कैश आउट. एंड अगेन डेट कंसोलिडेशन, इफ यू आर लिटरली trapped in high credit card debts, you have no option, or aapke samne sirf do hi option hai, filing bankruptcy or going for debt consolidation, then think about debt consolidation. Cash out is entirely a different thing. It's a very, very helpful thing for those of you, again, business owners hai, ya kabhi kabhi, you know, 2-3 saal aapka business slow ho jata hai, you start using your credit cards and aapka credit card debt badhta jata hai, or you had medical reason, you didn't work for 3-4 years, 3-4 months, again aapka credit card debt badh jata hai. For whatever reason aapke credit card debt badh gaye hai and now you are having that cash crunch, paying credit card, paying car payment, paying mortgage payment, bachche ki student ka loan hai, whatever it is, and you feel that crunch, and now you are sitting on this home where you have $300,000-$400,000 equity. Uska matlab hai ki aapke ghar ki value, let's say, $7.5 lakh hai, aapki loan sirf $3 lakh ki baki hai. Aapka credit score abhi bhi 680 hai. But now you have mortgage payment, you have two cars, jiski $1,500 ki payment hai, aapke credit cards ki $1,000-$1,500 ki payment hai. So other than your mortgage payment, you have other $4,000 payment. Then, so you feel that cash crunch. In this cash out, I'm not kidding me too, I'm telling you very frankly, it can be a great blessing in disguise. A lot of you might be thinking it's a sales pitch, but when you sit down, you do the numbers, it will be definitely a blessing in disguise. Bahut se log hamare paas aate hai jo already behind ho jate payments mein, 1-2 mahina behind ho jate, 3 mahina behind ho jate, aur wo reason kya hota hai, hum 2-3 bank ke paas gaye the, they said we have to refinance our first loan, and I didn't want to lose my 3% interest rate. You want to lose your house, you want to lose your credit, you want to lose your car, but not lose 3% interest rate. You know, sometimes you have to bite the bullet and move on. And if you are in that situation, please do not procrastinate. Be proactive, do not be reactive. Mere paas bilkul every week ek client aata hai, I'm not kidding you, jisko hum 2 mahina pehla help kar sakte the, now I cannot help them. And again, I love to have that business, but I feel bad for them also. Because 2 mahina pehle we could have helped them. Now they are 2 months behind on their car, they missed their credit card payment, and then they came to us. This happens almost every week. So I would request your listeners, even if you are self-employed, we have some great programs with bank statements. Now you can do cash out loans. 2 saal pehle with bank statements, you could not do cash out loans. So if you are self-employed, आपका बिजनेस स्लो गया था, आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना शुरू कर दिया, आपको और बिजनेस एक्सपैंड करना है, यू वांट कैश आउट, एंड इफ यू आर अ होम ओनर, दिस कैन बी अ ग्रेट प्रोग्राम वेयर यू कैन रिमूव कैश एंड देन पे ऑफ योर क्रेडिट कार्ड, पे ऑफ योर कार, प्लस हैव एडिशनल कैपिटल इन हैंड डिपेंडिंग ऑन द इक्विटी यू हैव इन योर हाउस एंड स्टार्ट यूजिंग दैट टू पे ऑफ योर कार्ड एंड देन एक्सपैंड योर बिजनेस. सो कैश आउट इज ऑनेस्टली अ ग्रेट प्रोग्राम फॉर दोज ऑफ यू हु रियली नीड दैट कैश.
0: So it is so important, the way you told us, it is so important for people to remember time is key here. So zarur waqt pe aap pahunch jaye to Hussain Panjwani and his team can help you. Once again, 972-245-5626 is that number to call and reach them. dreamhomemortgage.com hai website. Aur hamare paas 20 seconds hai. Anything further that you'd like to add, Hussain Saab? Hussain Saab, do I have you? Hello, I guess जो भी प्रॉब्लम आई है लाइन में, आई थिंक बिल्कुल सही वक्त पे तो नहीं कहूंगी, लेकिन सारी बातें हो चुकी है. आई एम ग्लैड अबाउट दैट. सो वंस अगेन, dreamhomemortgage.com इज द वेबसाइट.
2: रुको जरा, सबर करो.
3: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून्ड टू फनेशिया.
4: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
5: कौन सा?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
5: अरे सारे तो सेम है.
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला.

0: फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
6: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
13: प्लानिंग टू बाय अ परफेक्ट होम और मेक अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया? नाउ इट्स इजीियर देन एवर। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो इन फ्रिस्को। Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

Javed Jafri and Madhuri Dixit in that one. Do you all remember from this song from 100 Days? Well, this is a song that sort of inspired me to play another song, which is Madhuri Dixit. Ka hai. But wahi kuch awaazein jo main aapke liye play karna chahti hu. Amit Kumar ki awaaz once again in this next track that you are going to listen to. And let me make a quick correction here. As I run through the credits, I roll my eyes through the credits. And mujhe yahan dikha ki bhai Udit Narayan ki awaaz hai. Sorry for the this wrong information, क्योंकि हम यकीन मानते हैं कि भाई जो भी information दें बिल्कुल सही सही आप तक पहुँचे, और इसीलिए यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ आप सभी के लिए श्री कृष्णा ज्वेलर्स, जो आपको याद रखना है कि अगर आपको ऐसी कोई ज्वेलरी का पीस चाहिए जो कि आप अपने अगले जनरेशन तक पास करें, और एक ही लेगेसी ज्वेलरी एयरलूम ज्वेलरी जो है आप लेना चाहते हैं, तो आपके लिए ये श्री कृष्णा ज्वेलर्स जो हैं वो ऐसी ही कुछ ज्वेलरी लेकर आते हैं. एवरी पीस टेल्स अ स्टोरी देयर, और गोल्ड से लेकर डायमंड तक एक्सक्विजिट कलेक्शन जो है इनके, ऑल्सो इन कुंदन एंड पोल की. Get in touch with them, go to their showroom and find out more. It is in Frisco, ladies and gentlemen, and they have been crafting creations since 1967, ladies and gentlemen. This is Gapshap Gali with Me Too. Up next is the weather update for all of you right here.

बस इसी चांटे का वेट कर रही थी मैं. ये गाना इसी पे ख़त्म होता है एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड. थोड़ा ड्रामेटिक होना, थोड़ा नहीं, ओवर द टॉप ड्रामेटिक होना. और उसके बाद भी आमिर खान फिर स्लो मोशन में इस गाने को कंटिन्यू करते हैं, दीवाना मुझसा नहीं, एंड दैट वाज़ द टाइटल ट्रैक ऑफ द फिल्म. एक और ऐसा ही ड्रामेटिक गाना जो माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर के बीच होता है, पंकज योर रिक्वेस्ट कमिंग अप, जहाँ पे फिर एक बार अमित कुमार की आवाज़. ऑल्दो दिस गाना वॉज इन उदित नारायण वॉइस, लेकिन इसके पहले जो लगाया था, अगर आपने मिस कर दिया तो मिस कर दिया. फिलहाल तो अमित कुमार और साथ में अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में वी गोइंग टू टेक यू टू द नेक्स्ट गाना. लेकिन उसके पहले ये भी बताना चाहती हूँ ना कि भाई वेदर अपडेट जो मैं देने वाली थी वो तो आप लोगों तक पहुँचनी चाहिए, राइट? सो आज याद दिलाना चाहती हूँ कि मौसम अच्छा है आफ्टर सम गुड नंबर ऑफ बैड डेज दैट वी हैड इन द लास्ट वीक. रियली वेरी बैड डेज एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट. प्रॉपर्टी एंड लोगों की जाने भी गई हैं एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंड एंड इट्स अ काम वीक, काम वीक दैट वी आर गोना सी. यू कैन एक्सपेक्ट सनी वार्म एंड विंडी डे टुडे. हाइज हमारे लो टू मिड 80s तक पहुँचेंगे एंड द विंड विल बी एक्चुअली 30 miles per hour तक जो है विंड गास्ट पहुँच सकती हैं. तो इट इज़ अ विंडी डे एज आई टोल्ड यू. टेम्परेचर्स विल ट्रेंड वार्मर विथ हाइज रीचिंग अप टू 80s टू लो 90s बाई टमोरो आफ्टरनून. और टमोरो आफ्टरनून ही हमारे लिए लेट टूवर्ड्स यू नो लेट नाइट मैं देख रही हूँ, सॉरी नॉट आफ्टरनून, लेट ट्यूजडे नाइट टू वेंसडे मॉर्निंग कुछ थंडर स्टॉम्स और शावर्स भी एक्सपेक्टेड है. नॉट एवरीवेयर, सो यू नीड टू बी रियली वेदर अलर्ट रहिएगा, वेदर अवेयर रहिएगा एंड फाइंड आउट आपके एरिया में क्या हाल है. सम ऑफ दीज स्टॉम्स बिकॉज कुड बिकम सिवियर विथ हेल एंड गस्टी विंड, सो be very cautious about that. Or dry or cooler weather will be in place towards the end of the week. So, aaj ka high maine aapko bataya 84 ke aaspaas, it will be very very windy. Raat ka low kuch 69 ke aaspaas, it's going to stay windy. Or fir Tuesday ka weather kuch 90 tak pahunchega and then Wednesday hum lower 80s mein wapas aa jayenge. Thursday ek temperature dip dekhne wale hain, 74 tak hamara high jayega with a low of 54 on Thursday. And then back again in the 80s on Friday, Saturday and Sunday. Sunday, jo ki hai Mother's Day. Filhal chalein, aage badhaein apne Monday ki gaadi.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: कंप्यूटर जी का सवाल ये है बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है ऑप्शन ए स्लो प्रोसेस ऑप्शन बी ज्यादा पेपर वर्क ऑप्शन सी क्रेडिट स्कोर का कंसर्न या ऑप्शन डी लोन डिक्लाइन होने का डर
5: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा
4: कंप्यूटर जी SBA Loan Experts से कनेक्ट किया जाए
6: SBA Loan Experts ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है नो टैक्स returns needed to apply और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं Results सिर्फ 10 मिनट में
7: बिजनेस लोन options को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338 817-786-3338 The SBA Loan Experts फैसला क्लैरिटी के साथ
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: 3 minutes that's how long it takes to sign up with Bezit they challenge your property tax appraisal build the case go to the hearing you just wait for the result 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
13: Did you know Bawarchi Biryani's is the number one Indian restaurant chain in USA? It's true, with over a decade of experience and 50-plus locations across the country, Bawarchi Biryani's makes the best Hyderabadi Dum Biryanis and Andhra Pulaos. They also serve the finest North and South Indian cuisine. So why dine anywhere else?
14: Visit one of their DFW locations, Plano, Frisco, Irving or Richardson.
15: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
16: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
15: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
16: वेट व्हाट
17: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
18: हाय दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग
17: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए कॉल 669-243-5799 दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन
19: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
1: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
2: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
9: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: अच्छा, कितनी देर तक, ये सवाल कुछ मेरे एक लिसनर का भी था जिन्होंने कहा कि जैम लाउंज कैसा रहा, कितनी देर तक चला एंड ऑल ऑफ दैट. सो वेल, फर्स्ट ऑफ मई को हमने जो ये जैम लाउंज रखा था, यू रिमेम्बर ना, जैम सेशन जो हम पहली बार लेकर आ रहे थे डैलस में, वो हो चुका है फर्स्ट ऑफ मई. और बहुत बहुत बहुत मज़ा आया. 1.5 घंटे का जो साथ था ना, बिल्कुल सॉलिड था. एंड पीपल वर विथ अस, द ऑडियंस वर टोटली विथ अस. और हमने जितने भी मेडलीज सारी तैयार की थी, आरजेस ने मिलके और म्यूजिशियंस ने मिलके, वो सब उसमें साथ झूम रहे थे, गा रहे थे. इट वॉज ए साइट टू बी होल्ड रियली. एंड दैट प्रॉम्प्टेड अस कि यार, फनीशा नेटवर्क हैज़ टू गो बिगर ऑन दिस इवेंट. तो हम इससे बड़ा इवेंट लेकर आने वाले हैं आपके लिए. एंड वी विल मेक दैट अनाउंसमेंट. एंड डू नॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मिस दैट इवेंट, क्योंकि सच में जिन्होंने अटेंड किया वो जानते हैं कितना मज़ा आया है ना. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस मज़े का थोड़ा सा और जो है गाड़ी आगे बढ़ाते हैं. इन ए बिट आई विल हैव पंडित ईश्वर जी टेलिंग यू अबाउट द ज़ोडियक साइन. तब तक आप ये गाना एंजॉय करो, मैं वापस आती हूँ. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat. Yeah, I'm on this. Check this out now.

All right, ladies and gentlemen, you are listening to Furniture Radio 104.9 FM. हमारी ना गपशप बातों के बीच में बहुत सारी जरूरी जानकारी हम शेयर करते रहते हैं. जैसे क्लासरूम एनवायरनमेंट में होता है ना कि टीचर जो होती है वो मतलब बहुत सारी जरूरी बातों में बीच में कुछ एक आध ठहाके लगा देती हैं. हमारा उल्टा रहता है, हम बीच में कुछ एक आध इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट जो है शेयर करते हैं. तो ऑलवेज बी वेरी अटेंटिव व्हेन यू आर लिसनिंग टू फर्नीचर रेडियो, ओके? क्योंकि ये सारी जानकारी हमें पता है कि ना सिर्फ आपके लिए यूजफुल होंगी लेकिन आपके आसपास के लोगों के लिए भी. एंड यू नो कनेक्शन इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क इज़ वॉट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज यू नो दीज इन्फॉर्मेशन गो. मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी एक्सीडेंट में हो, स्लिप एंड फॉल केस रहा हो या वर्क प्लेस इंजरी रही हो, ओमर ख्वाजा, अटर्नी ओमर ख्वाजा का नाम आपके जहन में इमीडिएटली आना चाहिए. एंड फॉर एवरी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर लाइफ, हर चीज़ का एक सही टाइम होता है. एंड सही टाइम फॉर सीइंग अटर्नी ओमर ख्वाजा इन केस ऑफ एनी इंसिडेंट दैट यू हैड इज़ राइट एट द बिगिनिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, गेट दैट हेल्प. अगर आप खुद परेशान हैं अपने आप के सारी चीज़ों को लेकर, यू नो द इम्पैक्ट द एक्सीडेंट हैज़ हैड ऑन यू, तो फिर इन दैट केस यू नो अटर्नी ओमर ख्वाजा आपकी लाइफ बस आसान ही करने वाले, क्योंकि ही विल मेक श्योर दैट यू गेट द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व. और वो भी बिना किसी स्ट्रेस लिए हुए, बिना कुछ काम किए, कुछ हार्डवर्क किए, आपको ये कॉम्पनसेशन मिल सकता है इफ़ यू गेट इन टच विद देम एट द राइट टाइम. यू डोंट पे अंटिल यू विन, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉमिस दैट एनी कंपनी कैन कम अप विद, एंड दैट्स वॉट दे मेक फॉर यू. और ये फ्री कंसल्टेशन के लिए 4693005046 पे ज़रूर कॉल करें. attorneyomer.com इज द वेबसाइट, डू रिमेंबर दैट. दिस इज गपशप गली विथ मी टू. स्पिरिट एयरलाइंस की जो खबर है वो शेयर करेंगे, बहुत सारी और चीज़ें हैं. 12:30 बजे तक का वक्त है, बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है यार. लेट मी गेट इन टू द बिजनेस.

कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ, यहाँ पे याद दिलाना चाहती हूँ. वैसे आज के दिन, इट इज मंडे मे 4th, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. और आज के दिन मेट गाला जो होने वाला है शाम को, ये बिल्कुल फैशन फिएस्टा जो शुरू होगा. इस साल का थीम है कॉस्ट्यूम आर्ट विथ ए फैशन इज आर्ट ड्रेस कोड. एंड दिस इवेंट टेक्स प्लेस एट द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट इन NYC. और रेड कार्पेट जो होगा वो शुरू होगा हमारे सेंट्रल टाइम के हिसाब से शाम के 5 बजे. और ये लाइव कवरेज Vogue.com, TikTok, YouTube और ई पे मिल सकता है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. मतलब आज शाम से बाहर होने वाली होगी ऑफ द बियर्ड एंड द फैंसी कॉस्ट्यूम्स. बियर्ड भी होते हैं, यू कैंट डिनाई दैट. बट मैं फैशनिस्टास को मतलब डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती हूँ ये वियर्ड वर्ड यूज़ करके. भाई मतलब एक एक्स्ट्रा वेगेंजा ऑफ कॉस्ट्यूम्स दैट वी आर गोइंग टू सी दिस इवनिंग. आपके पूरे फीड में काफ़ी कुछ भरने वाला है, दैट इज़ फॉर श्योर. एंड द इवेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय जेफ बेजोस एंड लॉरेंस सैंचेज बेजोस. दिस इज ए फुल्ली स्टॉक्ड एक सेलिब्रिटी, एक जो हंगामा होता है ये एनुअल बेनिफिट फॉर द कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट दैट इट गोज टू. यू आर लिसनिंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM. एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो. ये GrahPravesh.com लेकर आती है और मे 9th और मे 10th को होने वाला है. सो डू रिमेंबर दैट, मार्क इट ऑन योर कैलेंडर्स. इट इज एट द ब्यूटिफुल हायत रीजन फ्रिस्को इन डैलस. और आपका ये मौका होता है हर साल की तरह इस साल भी आप टॉप बिल्डर्स से मिल पाएंगे फ्रॉम सिटीज लाइक हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली NCR. ये शानदार प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं. ओवर 200 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स दैट दे आर ब्रिंगिंग फॉर ऑल ऑफ यू. लग्जरी अपार्टमेंट से लेकर विलास तक, प्लॉट से लेकर फार्मलैंड तक, यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू बाय योर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लेडीज एंड जेंटलमैन. और ये शानदार मौका वंस अगेन हैपनिंग ऑन मे 9th एंड मे 10th. मार्क इट ऑन योर कैलेंडर्स. एज आई ऑलवेज टेल यू कि ये डेट्स याद रखना बहुत जरूरी होता है. एक बार मिस कर गए तो पूरा साल भर इंतजार करना पड़ेगा. वेदर यू आर लुकिंग फॉर रेडी टू मूव हाउसेज और एक्साइटिंग न्यू launches, you can enjoy exclusive expo only deals designed just for you. So go for it, ladies and gentlemen. Lekin register karna bilkul na bhule at their website GrahPravesh.com and take those first step towards your dream home back in India. You are listening to Fanisha Radio 104.9 FM, bringing the community together. Thoda sa mood change kar rahe hain yahan pe. Hamari ek listener hai jinka naam hai Shivani. She wanted to listen to this gana. Ab zaruri to nahi hai har kisi ka mood ek jaisa ही हो. सो लेट्स गो फॉर दिस सॉन्ग.

0: All right, while we are at it talking about events, एक और इवेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ यहाँ पे, जो मे 14th से लेकर मे 17th तक आप लोगों के लिए है. एंड यू कैन स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ दिस 3-day इमर्सिव जर्नी, जहाँ पर आप पूरी तरह से अपना स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, अपने इमोशनल ब्लॉक्स जो हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं, आप रिकनेक्ट कर सकते हैं विथ योर इनर सेल्फ. एंड दिस इज ए रिट्रीट ब्रॉट टू यू बाई ओशो यूनिवर्सल. oshouniversal.org पे जाके रजिस्टर करना बिल्कुल ना भूले. थ्रू पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक्स गाइडेड बाय एक्सपीरियंस फैसिलिटेटर्स, यू विल गेट दिस वेरी सीरीन एटमॉस्फेयर एंड द फीलिंग विद इन, बिकॉज समटाइम्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इज स्लो डाउन. रिमेंबर अबाउट दिस वेब.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त. ओनली ऑन फन एशिया रेडियो. ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
3: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids wear.
4: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
3: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
11: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं.
12: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है.
11: कैसे?
12: पेज 3 ईटरी?
11: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन.
12: ड्यूड, इट्स पेज 3. स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट.
11: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
13: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट.
14: Hi, this is Salim Merchant from Salim Suleiman, and you're listening to me on Fun Asia Radio.
15: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio. My-

यू आर लिस्निंग टू फनीशर रेडियो 104.9 FM और गपशप गली में हम उस गली जाने वाले हैं जो स्पिरिट का न्यूज़ है जो काफ़ी लोगों को हिला के गया. हमारे मेरी एक फैमिली मेम्बर एक्चुअली फ्राइडे को ही वॉज गोइंग टू फ्लाई स्पिरिट एयरलाइंस, लेकिन एंड वक्त पे फ्लाइट सारी जो कैंसिल हो गई, बैंकक्रप्ट हो गया स्पिरिट एयरलाइंस. इट ऑल हैपेंड ओवर द वीकेंड लेडीज एंड जेंटलमैन. और ऐसा नहीं कि इसके बारे में हमें पता नहीं था, स्पिरिट की हालत हम सबको पता थी. एंड वीकेंड ट्रैवलर्स को एक्चुअली फ्राइडे को जो हुआ उसके लिए पहले बता दिया गया था टू नॉट गो टू द एयरपोर्ट. एंड द डिसीजन लीव्स अराउंड 17,000 एम्प्लॉइज आउट ऑफ वर्क. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पिरिट एयरलाइंस जो कि पूरी कोशिश में था कि कुछ जुगाड़ हो सके, बट इट ऑल फेल थ्रू द क्रैक्स जब $500 मिलियन का रेस्क्यू पैकेज दैट द गवर्नमेंट कुडंट हेल्प विद और सपोर्ट. So that's what is with Spirit Airlines, जो कि 1992 में एज अ कमर्शियल पैसेंजर सर्विस स्टार्ट हुई थी और धीरे धीरे US की 7th लार्जेस्ट कैरियर बन चुकी थी. एंड इट वॉज शटलिंग अराउंड 44 मिलियन ट्रैवलर्स एवरी ईयर. एंड स्पिरिट वॉज एब्सोल्यूटली नोन फॉर पायनियरिंग दैट अल्ट्रा लो फेयर प्राइसिंग मॉडल इन द US. और 2010 में अगर आपको याद है, दे वर द फर्स्ट कैरियर इन द कंट्री जिन्होंने कैरी ऑन बैग्स के लिए चार्ज लगाना शुरू किया था. एंड उस तरह से उन्होंने अपना जो है कॉम्पनसेट करना शुरू किया था फेयर्स. लेकिन COVID-19 के वक्त एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन जो हर एयरलाइन ने सफ़र किया था, स्पिरिट एयरलाइंस ने भी किया था. एक के बाद एक फेल्ड एंड ब्लॉक्ड मर्जर्स, बैंकरप्सी फाइलिंग्स, सब ने हालत ख़राब करके रख दी थी

उस तरह से उन्होंने अपना जो है कॉम्पनसेट करना शुरू किया था फेयर्स. लेकिन COVID-19 के वक्त एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन जो हर एयरलाइन ने सफ़र किया था, स्पिरिट एयरलाइंस ने भी किया था, एक के बाद एक फेल्ड एंड ब्लॉक्ड मर्जर्स, बैंक्रप्सी फाइलिंग्स, सब ने हालत ख़राब करके रख दी थी यू नो स्पिरिट एयरलाइंस की. एंड द फाइनल ब्लो ऑफ कोर्स जब फ्यूल प्राइसेस, जेट फ्यूल प्राइसेस जो कि ईरान वॉर के कारण जो ट्रिगर हुआ है उसके कारण बहुत बड़ा इम्पैक्ट हर एयरलाइंस पर पड़ा है. 30% of the cost of jet fuel is the allotted cost for all airlines. और यहाँ पे हालत ऐसी है कि double हो चुका है वो price. So it was very difficult for Spirit Airlines to pull on. And it is truly the end of an era for budget travel in the US. वो late 1990s का पता नहीं आप लोगों ने वो एक बड़ा catchy jingle था. आप सुनिएगा ज़रूर, you will find it on YouTube. And that's Spirit Airlines, ladies and gentlemen. कुछ जब बहुत सालों से आप जिसको यूज़ करते आए हो कोई product या कोई services, जब वो ख़त्म होता है ना तो बड़ा बुरा सा लगता है. तो बड़ा बुरा सा लग रहा है और यहाँ पे मैं आपके लिए एक सवाल लेकर आई हूँ. हमारा इंटरेक्शन होता है ना तो बस एक गाना लगाने वाली हूँ और आप लोगों को उसके बाद ऑन एयर लेने वाली हूँ. और मेरा सवाल आप लोगों से वही है अबाउट शट डाउन और यू नो द क्लोज आउट ऑफ एनी प्रोडक्ट. तो आप मुझे बताइए, द क्वेश्चन फॉर यू इज अबाउट ए शट डाउन ऑफ एनी प्रोडक्ट इन योर लाइफ टाइम जो अब नहीं है एंड यू डियरली मिस इट. ऐसा कुछ हो तो ज़रूर बताइएगा हमें. यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. गपशप गली में आपके लिए सवाल है कि वॉट इज दैट प्रोडक्ट विच इज़ नो मोर इन सर्कुलेशन विच यू मिस डियरली. स्टूडियो का नंबर है 972-235-5555. इस गाने के बाद लेते हैं आपको ऑन एयर.

Listen, I'm still taking a couple of calls here. If you want to reach me, now is the time. क्योंकि हम पूछ रहे हैं आपसे, स्पिरिट शटडाउन होने के बाद बहुत सारे इमोशंस जो फ्लोट हो रहे हैं ऑन सोशल मीडिया, उससे समझ में आता है क्लियरली कि एक एरा जो खत्म हुआ है स्पिरिट एयरलाइंस के साथ, पीपल आर गोइंग टू मिस इट बैडली. और पीटर, क्या नाम है उनका, मैं क्यों नाम भूल रही हूँ यार, ये जो एक यूट्यूबर हैं जो कि वायरल हुए थे फॉर द रीजन कि उन्होंने 24 घंटे स्ट्रेट उन्होंने स्पिरिट एयरलाइंस ट्रैवल किया था. हंटर पीटरसन, यस दैट्स द नेम. और ये यूट्यूबर और टिकटॉक क्रिएटर हैं जो कि वायरल हो गए थे इस रीजन से. उन्होंने सोचा कि यार ही रेज मनी फॉर इट एंड ही इज एक्चुअली ट्राइंग टू क्रिएट ए स्पिरिट 2.0 जहां पर ही इज ट्राइंग टू बाय स्पिरिट एयरलाइंस एंड ही एक्चुअली रेज a good amount of money, definitely not enough, but $22 to $26 million that he was able to gather in 48 hours from over 36,000 supporters. Can you believe that? Well, you are live on air. Acha, inhone lagta hai call drop kar diya. No worries at all because I have the answer from Jalpa, and Jalpa ne kaha ki wo Circuit City ko kafi yaad karti hain. Seriously yaar, wo bhi ek jagah thi jo 2009 mein band ho gayi thi and we really miss going around and looking at all the gadgets and everything. Circuit City ek regular stop hua karta tha hamara. Hum bhi bahut miss karte hain us jagah ko, and there are so many other products also that we miss jo ki past mein tha aur ab nahi hai. Aisa hi ye sawal tha. Jalpa, call me back because you have won for yourself from Neon Cactus. $20 ka ye gift voucher hua aapka. Give me a call back. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. Yahan se seedhe jo jane wali hoon wo hai is gaane par.

A film that released on this day in the year 2006. वहाँ से काफी पीछे लेकर जाने वाली हूँ आप लोगों को. Angry Young Man का खिताब आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को ये 1973 में मिला था, करेक्ट, जंजीर फिल्म के साथ, राइट. चलते हैं वहाँ से 5 साल आगे 1978 पे, क्योंकि 1978 में एक फिल्म आई जो रिलीज हुई थी आज ही के दिन. दैट्स राइट, 4th of May, लेडीज एंड जेंटलमैन. और जस्ट 5 सालों में अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा को कई सारे हिट्स वो दे चुके थे बाय 1978. और उनकी ज़्यादातर रोल्स जो होती थी वो एंग्री यंग मैन के वो इमेज को वो शोकेस करती हुई होती थी. लेकिन 1978 की ये फिल्म थोड़ी अलग थी. इफ जंजीर सॉ अमिताभ बच्चन इन एन एग्रेसिव इमेज, वहाँ पे जो कि वो आवाज़ उठा के जोर गले में बात करते थे टू मेक हिज पॉइंट, द फिल्म प्रेजेंट्स ए कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ हिम बीइंग साइलेंट, बीइंग स्कीमिंग एंड रेगुलर डिशुम डिशुम मारपीट से बिल्कुल परे. ये 1978 की फिल्म थी एंड ही वाज स्टिल वेरी एंग्री बट इन अ डिफरेंट वे. इस फिल्म का नाम आपको बताना है. उस फिल्म का गाना मैं सुना देती हूँ और बदले में जो भी मुझे पहला सही जवाब देगा ना उनको देने वाली हूँ फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड.

कुछ मई फोर्थ की रिलीजेस हम थोड़ा पीछे लेके गए हैं आपको, थोड़ा सा 1978 से आगे आने वाली हूँ, बट नॉट बिफोर गिविंग अवे दी आंसर, एंड दैट आंसर केम फ्रॉम सुजाता. सुजाता, कंग्रेचुलेशंस, यू वन फॉर योरसेल्फ फ्रॉम फन पिज़्ज़ा किचन. आपने बिल्कुल सही फरमाया, इट वॉज अ फिल्म त्रिशूल. सलीम जावेद ने लिखी थी ये सुपरहिट कहानी, और ये सुपरहिट फिल्म के सुपरहिट गाने कंपोज किए थे खयाम साहब ने. और जाते जाते मे फोर्थ का एक और रिलीज है जिसका नाम है जन्नत 2, जिसमें वंस अगेन अमेजिंग म्यूजिक वॉज गिवन बाय प्रीतम, और वही मैं आप लोगों के लिए लेकर आना चाहती हूँ राइट नाउ राइट हियर ऑन फनेशिया रेडियो. राहत साहब का वो गाना लेकर आए जो कि बहुत ही बढ़िया था, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्ले फॉर यू. आई हैव डिसाइडेड तेरा दीदार हुआ जन्नत 2, लेडीज एंड जेंटलमैन, इमरान हाशमी and Esha Gupta in this one film with amazing songs. और आज है फोर्थ में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. Also called as Star Wars Day, ladies and gentlemen. May the fourth be with you.

हेलो एंड नमस्ते डैलस, मैं हूँ आपकी अपनी आरजे देसी गर्ल एके आरजे सिमी, और अभी बज चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में 12:24, और हमारा सफर होने वाला है अगले 2 घंटे तक। एंड द शो इज नोन एज दोपहर विद देसी गर्ल। तो इसमें मैं 2 सेगमेंट्स में शो करती हूँ। पहला वो सेगमेंट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स ट्रेंडिंग, सोशल मीडिया पे क्या वायरल हो रहा है, क्या नई चीजें हो रही हैं, व्हाट इज द वर्ल्ड टॉकिंग अबाउट। और जो दूसरा सेगमेंट होगा उसमें हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, आपके ओपिनियंस लेंगे, आपसे उम्मीद करेंगे कि आप मुझे कॉल करें, आंसर्स बताएं, या फिर कॉल करें और यूं ही बातें करें, और उसमें कुछ गिव अवेज भी हैं। सो स्टे ट्यून्ड। और मैं चाहती हूं कि इसके पहले कि हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करें, आप ये गाना एंजॉय करें।

इस सॉन्ग में थे द मोस्ट रोमांटिक कपल आई वुड से, शाहरुख खान एंड नयनतारा, मतलब नॉर्थ के द मोस्ट रोमांटिक स्टार शाहरुख खान, और जो साउथ की मोस्ट रोमांटिक हीरोइन द क्वीन नयनतारा. और अगर आप भी नयनतारा जैसी चमकना चाहते हैं, उनके जैसे डाजल करना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में, जो कि है प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. और वहां पे आपको मिलते हैं स्टनिंग डायमंड रिंग्स, ईयर रिंग्स, नेकलेसेस, और आपके स्पेशल मोमेंट्स के लिए और स्पेशल उसको बनाने के लिए बहुत सारी ट्रेंडिंग ज्वेलरी, क्लासिक सॉलिटेयर से लेके कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स तक. उनके पास है बहुत सारे डायमंड कलेक्शन जिनकी की क्वालिटी बहुत अच्छी है. टाइमलेस ब्यूटी को वो सेलिब्रेट करते हैं. उनके जो डिज़ाइंस हैं वो इंगेजमेंट्स, एनिवर्सरी या फिर कोई भी सेलिब्रेशन जिसमें आप लव को एम्फसाइज कर रहे हैं, उसके लिए खासा अवेलेबल है. तो बिल्कुल आप जाएं प्रेस्टन रोड, विजिट कीजिए, या फिर मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए बहुत सारे डिटेल्स के लिए. और अब चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, जो कि है व्हाट्स ट्रेंडिंग, एंड द शोज नेम इज दोपहर विद देसी गर्ल. और शो के इस सेगमेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आजकल क्या चल रहा है, क्या वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया किसकी बातें कर रहा है, दुनिया किसके बारे में बातें कर रहा है आजकल, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. जो चर्चे हो रहे हैं आजकल वो हो रहे हैं राखी सावंत जी के. अब आप पूछेंगे कि इसमें क्या नया है, राखी सावंत तो हमेशा से ही पॉपुलर है, उनके चर्चे तो बचपन से ही चलते आ रहे हैं. लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नया किया है. इस बार उन्होंने अपनी बात नहीं, दूसरों के बारे में बोला है. बट क्या बोला है इसको जानने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा. तब तक आप ये गाने सुनिए एंड स्टे ट्यून, कम बैक टू द शो टू नो व्हाट हैपेंड.

तो ये सॉन्ग डेडिकेटेड था मंडे ब्लूज को। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, वीकेंड ताज़ा ताज़ा ख़त्म हुआ है और आपको थोड़ा दुख हो रहा होगा कि अरे यार ये वीकेंड आते ही क्यों चला जाता है, बट क्या करें, जिंदगी ही ऐसी है, आते ही चली जाती है। कोई बात नहीं जी, हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपके मंडे ब्लूज को थोड़ा कम करें, कुछ मसालेदार बताएं। और इस सेगमेंट में विच इज़ व्हाट्स ट्रेंडिंग में, जैसे कि मैंने आपको इस सॉन्ग के पहले बताया था कि हम आपको बताएंगे कि क्या वायरल हो रहा है। और आजकल वायरल हो रही है राखी सावंत जी, क्योंकि उन्होंने कॉमेंट कर दिया है अमिताभ बच्चन, जया बच्चन और रेखा जी के बारे में। आई मीन ये खुद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड और कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट राखी सावंत तो राखी सावंत ठहरी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमिताभ जी को रेखा जी के पास चले जाना चाहिए और जया जी को ने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया ऑलरेडी अमिताभ जी के साथ, और उनको अब रेखा जी के पास जाने देना चाहिए क्योंकि वो तो ऑलरेडी उनको लाइफ से अब ज़्यादा इंटरेस्ट लग नहीं रहा है, वो खुद को मेंटेन नहीं करती, जबकि रेखा जी इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती हैं, इतना अच्छा खुद को मेंटेन करती है, और जया जी तो बोटॉक्स भी नहीं करती, तो आई थिंक उनको अब ये होने देना चाहिए। तो जब मैंने पहली बार ये इंटरव्यू सुना तो मैं 2 मिनट तक शॉक में थी कि मैं सही तो सुन रही हूँ, मतलब बोल बोल रही हूँ और डर मुझे

लग रहा है। खैर मैं तो स्पीचलेस हूँ, लेकिन अगर आपको कुछ कहना है इस इंटायर कंट्रोवर्सी इस चीज के बारे में तो आप बताएं। वैसे जया जी और अमिताभ बच्चन ने भी कुछ नहीं कहा है इस पे, क्या ही बोलेंगे, बट क्या करें, अब तो ऐसा हो चुका है। तो आप बिल्कुल मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि आपका क्या सोचना है इस पे। आप मुझे कॉल कर सकते हैं @972-235-5555 पे।

हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो दोपहर विद देसी गर्ल। और अभी अभी मुझे अली जी ने कॉल किया है क्योंकि हम बात कर रहे थे राखी सावंत और उनके साथ होने वाली कंट्रोवर्सी। आई थिंक उनके साथ नहीं होती है, वो खुद ही कंट्रोवर्सी क्वीन है, जो उन्होंने बोल दिया अबाउट अमिताभ बच्चन जी, जया जी एंड रेखा के बारे में कि जया जी को, अमिताभ बच्चन को राखी जी के, रेखा जी के पास भेज देना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम उन्होंने साथ में रह लिया और वो बोटॉक्स और मेंटेनेंस नहीं करती। मैं क्या ही बोलूं इस पे, मतलब पूरे इंटरनेट इस पे बातें कर रहा है और मैं सिर्फ देख रही हूं, मैं स्पीचलेस हूं। लेकिन अली जी का इस पे कहना था, अली जी का कहना था कि हम जैसे फन एशिया में बहुत सारे इंटरव्यूज कराते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट के, तो उसी तरीके से हम राखी सावंत जी को भी ले लें, आई मीन इंटरटेनमेंट हो जाएगा। आई थिंक दैट्स नॉट अ बैड आइडिया। आई वुड लव टू हैव हर ऑन माई शो, बट आई डोंट नो।

वैसे अगर आपको खाने के साथ चोर बाजारी करनी है तो आप जा सकते हैं पेज 3 E3 पे, जो कि है हब 121 पे, डालस का नया फ्लेवर फेवरेट है पेज 3 E3, जहाँ की इंडियन स्ट्रीट फूड मॉडर्न फ्लेवर को मीट करती है, मिलती है। और यहाँ पे बहुत कुछ वैरायटी ऑफ क्यूजिन मिलती है, रेंजिंग फ्रॉम कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स या मॉकटेल्स। सो अगर आपको कोई वाइब्रेंट वाइब्स चाहिए आपके ब्रंच के लिए, लंच के लिए या फिर डिनर के लिए, तो ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है फूडीज, डेट्स और जिनको भी लाइफ में फ्लेवर चाहिए, मसाला चाहिए, तो उनके लिए भी। तो आप बिल्कुल page3eatery.com पे जाइए अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो। एंड डेफिनेटली आई एम होपिंग कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा यहाँ पे खा के।

आई थिंक मुझे जो ये सवाल है ना, और दस किन्निया तरीफा चाहिए दिए तैनू, ये मुझे राखी सावंत जी से पूछना चाहिए और मुझे उनसे पूछना चाहिए कि और दस कितनी पब्लिसिटी चाहिए तेनू, कितना अटेंशन चाहिए तेनू, बिकॉज उनका तो नहीं ख़त्म हो रहा, उनकी बातें, उनकी कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म हो रही, जो उन्होंने रिसेंटली रेखा, अमिताभ और जया जी के बारे में कहा है, उसकी वजह से जो इंटरनेट है वो दो सेगमेंट्स में डिवाइड हो चुका है। जी हाँ, पहला वो सेगमेंट है जो राखी की तरफ है कि भाई जो भी कहो, मजा तो आ रहा है, बंदी में दम तो है, गट्स तो है, बोल लेती है यार, कोई नहीं, हमें तो पता ही है कि राखी कैसी है, ऐसी ही है वो, लेट्स जस्ट डील विद इट, लेट्स जस्ट लिव विद इट। लेकिन जो दूसरा सेगमेंट है वो खासा नाराज भी है, उनका कहना है कि यू नो, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, दूसरे की पर्सनल लाइफ पे नहीं बोलना चाहिए, देर शुड बी अ लिमिट, देर इज अ थिन लाइन बिटवीन इंटरटेनमेंट एंड ऑफेंडिंग समवन। सो आपका क्या कहना है इस पे, आपका ओपिनियन भी मैटर करता है हमारे लिए, तो आप बिल्कुल हमें कॉल करें एट 972-235-5555 पे और बताइए कि इस पूरे केस पे आपका क्या कहना है। तब तक ये गाना भी एंजॉय कीजिए।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
5: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे लुमडी लर्निंग सेंटर जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को प्रॉस्पर एंड मकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13 कंटीन्यूअस फीडबैक ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग
10: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping, aur ek strong financial strategy. AG FinTax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com प्लान टुडे ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
15: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
17: हेलो एक्सीडेंट क्लेम ओके नेम ऑफ द लॉयर उमर ख्वाजा
18: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com
0: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर
11: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस
0: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर
11: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल तुमने फिर कार्ड यूज किया
19: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
11: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
19: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
0: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट नो अपफ्रंट फीस फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम कॉल 1-800-400-9468 Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
1: I am Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.
20: Hello and welcome back to my show. You are listening to RJ Simmi and the show's name is Dopahar with Desi Girl. तो मैं आपके साथ रहती हूँ 12:30 से 2:30 बजे तक. अभी स्टूडियो क्लॉक में टाइम हो गया है 1:05. तो हम शो को आगे बढ़ाते हैं और इस पिछले सेगमेंट में हम बात कर रहे थे व्हाट्स ट्रेंडिंग, व्हाट्स कंट्रोवर्शियल, व्हाट्स न्यू इन द वर्ल्ड. तो उसमें हम बात कर रहे थे राखी सावंत जी की कंट्रोवर्सी के बारे में और काफ़ी कॉल्स आए हैं मुझे डिस्कसिंग अबाउट कि राखी सावंत ने ये जो रेखा जी, जया जी और अमिताभ बच्चन पे जो कमेंट्री किया है कि जया जी को, अमिताभ बच्चन को रेखा जी के पास जाने देना चाहिए, बची खुची जिंदगी गुजारने देना चाहिए, उस पे तो उन पे लॉ सूट भी हो सकता है. ये तो पब्लिक मैटर नहीं है, ये तो पर्सनल मैटर है. खैर, अगर आपको किसी लॉ सूट की जरूरत पड़े, अगर आपको लॉ ऑफिस जाने की जरूरत पड़े, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. सीमा मेहता जी हैं, उनका लॉ ऑफिस है जो कि हेल्प करती हैं टू ऑल दी इमिग्रेंट्स एंड दी अदर सिटीजन्स जो कि H1B पे हैं, F1 पे हैं, L1 पे हैं या किसी भी नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हैं और चाहते हैं कि आपको US की परमानेंट रेसिडेंसी मिल जाए, तो द लॉ ऑफिसेस ऑफ सीमा मेहता कैन रियली हेल्प यू हियर. तो अटॉर्नी सीमा मेहता जो हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है और वो स्पेशलाइज करती हैं इमिग्रेशन लॉ में, इंक्लूडिंग EB-5, इन्वेस्टर वीज़ास, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ास, PERM लेबर सर्टिफिकेशंस एंड US सिटीजनशिप. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम, ईमेल info@seemamehtalawfirm.com. और बिल्कुल आपके सॉल्यूशंस आपके पास होंगे. और अगर आप कुछ मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं या इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ बातें करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं मुझे @972-235-5555 पे.

Hello and welcome back to my show which is Dopahar with Desi Girl. अभी आप लोगों ने बहुत सारे कॉल्स किए और बहुत सारी बातें की, मुझे अच्छा लगा. एंड अभी जो है हम दूसरे सेगमेंट में जाने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मुझे एक कॉल आया एक लिसनर की तरफ से, और उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा है जिसका मेरे पास जवाब नहीं है. तो मैं चाह रही थी अगर आप मेरी इसमें हेल्प कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी. उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि हम बात कर रहे थे मंडे ब्लूज़ के बारे में, तो उन्होंने बोला कि संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है. सैटरडे आ जाए, फ्राइडे आ जाए, पर मंडे ही क्यों आता है. आपके पास इसका जवाब है क्या? अगर है तो मुझे कॉल कीजिए 972-235-5555 पे.

हाँ जी, हमें बहुत सारे कॉल्स आए हैं। हमने आपसे सवाल पूछा था, एक्चुअली हमारे लिसनर ने पूछा था कि संडे के बाद मंडे क्यों आता है। आई मीन फ्राइडे आ जाए, सैटरडे आ जाए, और बहुत लोगों को इस सवाल पे हंसी भी आई, बट क्या कर सकते, हमें कुछ इंटरेस्टिंग जवाब भी मिले। आयशा जी ने कॉल किया और हमें बताया कि यही है, यही दस्तूर है, यही कानून है, अब क्या करें, जीना है इसी के साथ। और अभी अजय जी ने कॉल किया और उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिया कि यू नो बाय क्रिएशन, अगर आप चाहें तो आप हर दिन संडे की जैसे भी जी सकते हैं, इट्स अप टू यू। आई थिंक आई क्वाइट लाइक दैट। ओह गॉड, वन मोर ईमेल।

Hello and welcome back to my show which is Dopeher with Desi Girl. अभी हम बात करेंगे कनेक्टिंग अमेरिका के बारे में. अगर आपका कोई बिजनेस है और अगर आपको चाहिए कि आपका जो बिजनेस एक्सपेंस है वो पावरफुल इनकम में तब्दील हो जाए वाया एन इंश्योरेंस बेस्ड स्ट्रैटेजी जो कि डिज़ाइन किया गया हो आपके बॉटम लाइन को, आपके प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो बिल्कुल आप कनेक्ट करें विद कनेक्टिंग अमेरिका. और ये सिर्फ इतने पे ही ख़त्म नहीं होता, उनके पास और भी सर्विसेज हैं, जैसे कि वो होम ओनर्स को हेल्प करते हैं, मदद करते हैं अपने मॉर्टगेजेस को पे ऑफ करने में, डेट्स को क्लियर करने में 10 साल या फिर उससे भी कम में. तो किस बात की इंतज़ार है हमें, हम आप कॉल कीजिए जेम्स को एट 321-888-7345 पे, ऑफ या तो फिर विजिट कीजिए connectingamericafinancials.com. और इस वेबसाइट पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि आप कैसे अपने डेट्स इमिडिएटली क्लियर कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस एक्सपेंस को कम करने में. टिल देन एंजॉय दिस म्यूजिक. वैसे इस सेगमेंट के बाद एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो मैं आपसे करना चाहूंगी. स्टे

अब आप सोच रहे होंगे कि एक भरी मंडे की दोपहर हम ये लोरी लोरी क्यों सुन रहे हैं, क्योंकि अगले संडे आने वाला है मदर्स डे और मई 10th को है मदर्स डे ऑन द संडे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम अभी से उसके बारे में डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है कि हम जो है गिफ्ट्स सेलेक्ट करें, डिसाइड करें, क्योंकि वो हमारे घर तक पहुंचने में आपको जाके एक पर्सनलाइज्ड गिफ्ट खरीदने में टाइम लग सकता है। इनफैक्ट इसके बाद एक मैं क्वेश्चन पूछूंगी जिसमें गिव अवे आने वाला है, बट थोड़ा सा मैं मदर्स डे के बारे में बता दूं कि जो मदर्स डे है उसको सेलिब्रेट किया जाता है उस इंसान के लिए जिसने यूजुअली जो फैमिलीज रेज करने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती हैं, शी इज़ दी जनरली दी लीडिंग लेडी ऑफ ऑल दी होम्स, और उनको अप्रिशिएट करना भी बेहद ज़रूरी है। और ये शुरू किया गया था अर्ली 1900s में बाई एना जार्विस, जो कि अपनी जिन्होंने अपनी मम्मी को ये डेडिकेट किया था। उनकी माँ की ये चाहत थी कि औरतों के लिए, मदर्स के लिए एक मदर्स डे एक स्पेशल डे हो जहाँ वो सेलिब्रेट किया जाए, और यू नो उनके लिए थोड़ा स्पेशल पैम्परिंग, थोड़ा स्पेशल केयर हो। एंड वी ऑल लव आवर मदर्स। तो क्योंकि जस्ट एक हफ्ते रह गए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि यू नो प्लीज सजेस्ट अस, हमारे लिसनर्स को, सबको बताइए कि क्या गिफ्ट दिया जाए मदर्स को कि वो और ज़्यादा स्पेशल फील करे। वैसे तो हर दिन मदर्स का होता है, बट यू नो हमें एक दो दिन उनको थोड़ा और स्पेशल तो हम फील करा ही सकते हैं। तो मुझे कॉल कीजिए और एक्साइटिंग गिफ्ट्स बताइए मदर्स डे के लिए, और इसमें हमने आपके लिए रखा है एक गिव अवे। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द म्यूजिक। फॉर सबमिटिंग योर आंसर्स प्लीज कॉल मी एट 972-235-5555।

0: हेलो एंड वेलकम बैक टू माय शो विच इज दोपहर विद देसी गर्ल. और हमने आपसे थोड़ी देर पहले एक गिव अवे क्वेश्चन पूछा था कि मदर्स डे पे अपनी अपनी मम्मा को क्या गिफ्ट करें, और हमें कुछ कॉल्स आए. और इस सेगमेंट की, इस गिव अवे की विनर है भावना, जिन्होंने बताया है कि हम मदर्स के साथ स्पेशल फोटो शूट करा सकते हैं, उनको अपने घर पे लगा सकते हैं, बिकॉज देन दे विल कीप लुकिंग एट इट एंड फील स्पेशल. आई रियली लाइक दिस आइडिया. ऑल्सो वी हैड अनदर कॉल फ्रॉम साइदा जी, जिन्होंने बताया कि हमें डिनर पे ले जाना चाहिए अपनी मदर्स को, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए मोर एंड मोर, उनको ज्वेलरी, फ्लावर्स और जो वुमेन स्पेसिफिक गिफ्ट्स होते हैं वो देने चाहिए. और दोनों ही आंसर्स काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे. बट इस शो, इस पर्टिकुलर गिव अवे की विनर है भावना.
1: रुको जरा, सबर करो,
2: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है. स्टे ट्यून टू फनेशिया.
3: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Babaji Biryanis in Plano, bigger, better and the best, now serving everyday lunch specials, thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks, freshly made sweets and bakery items. Please walk into Babaji Plano or visit babajiplano.com.
7: Sab kuch saaf rakh sakte ho,
8: par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati, koi nahi sochta mere bare mein.
9: Kyunki ye kaun bola?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पॉलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं. और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे. हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है. मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है. कॉल जीतू पटेल 9728772500.
11: यार मैं थक चुकी हूँ, पार्टी के पहले सफाई, फिर पार्टी, बाद में सफाई, ऊपर से आप तो कोई मदद करते हो नहीं, मेरे से नहीं होगा ये.
12: अरे यार बोला ना, लेकिन तुम्हें सुनना ही नहीं. बताया ना, जहाँ पार्टी है वहीं खाना है, जहाँ खाना है वहीं पार्टी है. सिंपल.
11: मतलब?
12: देख, जगह बुक करेंगे पूरे 3 घंटे के लिए, और वो भी सिर्फ $250 में, और खाना पीना जो ऑर्डर करना है वो अलग से पे करके वही ऑर्डर कर लेंगे. अब तेरे को तेरी सफाई की पड़ी है, अब खुल के पार्टीज कर, चाहे क्रिसमस हो, थैंक्सगिविंग हो या फिर तेरे भाई का बर्थडे. नाम याद रख बस, Fun Pizza at Colony.
5: Visit Fun Pizza Kitchen, FPK at Colony, is now open for dine-in.
13: Aaja meri gaadi mein baith ja.
14: Baith jaau? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
15: Wo thoda overheating tha.
14: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
17: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
18: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
17: Kya matlab?
18: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
17: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
18: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
17: Ab to करना ही पड़ेगा मैडम.
19: डोंट लेट डेट रूइन योर लाइफ. विजिट ura.org और कॉल 888-888-9914 एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर फाइनेंशियल फ्यूचर.
15: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.

0: Hello and welcome back. This is RJ Simmi and you are listening to Funasia Radio. अभी वक्त हो चुका है 1:36 in the studio clock और हमारे साथ है अमन. जी हाँ, and he has come from URA Debt Relief segment. So today we have the pleasure of having URA Debt Relief organization representative Mr. Aman, and he's going to tell us about the debt relief programs. So I would like to take Mr. Aman live on air. Hi Aman.
1: हाय फाइनेंशिया सुनने वाले सभी लिसनर्स को अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. मई का महीना है, पहला हफ्ता है. सो दोस्तों, इससे पहले कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम चिट्ठियां आप तक पहुंचें और फिर से आप वही गलती दोहराएं जो पिछले महीने या पिछले कई महीनों से करते आ रहे हैं, यानी कि मिनिमम पेमेंट करने की. लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मिनिमम पेमेंट से आपको नुकसान ये हो रहा है कि आप 28 से लेकर 47% तक इंटरेस्ट रेट भर रहे हैं. 28-47% इंटरेस्ट, कम ऑन. इतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो फिर उतरेगा तो डेफिनेटली नहीं. अगर आप भी परेशान हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा है उतरने का नाम नहीं ले रहा है और आप हर महीने उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन मिनिमम पेमेंट से इसलिए नहीं उतरता क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहे हैं, यानी ब्याज के ऊपर फिर ब्याज फिर उसके ऊपर ब्याज, तो इंटरेस्ट तो कभी खत्म नहीं होगा, तो हमेशा लगता रहेगा. ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड का कर्जा आपका आधे से ज्यादा माफ हो सकता है बल्कि पर्सनल लोन भी अगर आपने ले रखा है, कोई पर्सनल लोन हो सकता है जो आपने रेनोवेशन के लिए घर की या फिर किसी बच्चे की शादी के लिए या फिर फॉरेन ट्रिप्स के लिए आपने कुछ लोन ले रखे थे, लेकिन अब क्योंकि ट्रिप तो खत्म हो गए, लोन तो उतारने, लेकिन उसकी भी मिनिमम पेमेंट अगर आप दे रहे हैं 7-8% के आसपास, उसकी इंटरेस्ट रेट भी जारी होगी. या फिर अगर गाड़ी ऐसी जो टोटल हो गई किसी एक्सीडेंट की वजह से और इंश्योरेंस ने क्लेम नहीं दिया या इंश्योरेंस ही नहीं थी, और या फिर गाड़ी रिपोजेस हो गई, जिसको बोलते हैं रिपो हो गई, गाड़ी रिपोजेस हो जाती है, बैंक उठा के ले जाता है बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ऑटो लोन, तो उसके कारण भी जो लोन है वो स्टिल आपके सर पर बोल रहा है, तो उसको भी आप आधे से ज्यादा माफ करवा सकते हैं. तो बिना देरी किए हुए मिनिमम पेमेंट भरने से पहले आप कॉल कीजिए URA को. URA आपकी इन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक पेमेंट में कन्वर्ट करके आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा देगा. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे सीधी बात करना चाहते हैं, एनी टाइम कॉल मी, व्हाट्सएप मी, टेक्स्ट मी 9167763555. एक बार फिर से 9167763555. और हमारी वेबसाइट है www.ura.org. URA के स्पेल है ORA.org. तो इस महीने की मिनिमम पेमेंट भरने से पहले जरा रुक जाइए, कॉल कीजिए, आधा कर्जा माफ.
0: थैंक यू सो मच अमन, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विथ अस. हम आपसे दोबारा मिलेंगे, दोबारा बातें करेंगे. तब तक अपने लिसनर्स के लिए एक सॉन्ग बजा दें. एंजॉय द सॉन्ग.

Hello and welcome back to the show. This you're listening to Funasia Radio 104.9 FM और मैं हूँ RJ सिमी. तो इसके पहले हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हमें अपने मदर्स को मदर्स डे पे जो कि सेलिब्रेट होने वाला है मई 10th को क्या गिफ्ट देना चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग गिफ्ट आए और इस सेगमेंट की विनर है पावना. तो थैंक यू सो मच पावना फॉर कॉलिंग एंड सजेस्टिंग योर गिफ्ट आइडियाज. यू हैव वन अ देसी मंडे हैम्पर, सो यू कैन गो एंड कलेक्ट योर हैम्पर ऑफ असेंशियल ग्रॉसरीज फ्रॉम देसी मंडी विच इज लोकेटेड इन लुइसविल टेक्सस. आप हमें 24 से 48 घंटे का टाइम दीजिए क्योंकि इतना टाइम हमें लग जाता है टू कनेक्ट विद देसी मंडी एंड टीम. उसके बाद आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं. एंड इफ यू स्टिल अदर्स टू माई अदर लिसनर्स, इफ यू स्टिल हैव सम आइडियाज यू नो अबाउट मदर्स डे, यू कैन स्टिल कॉल मी एंड शेयर विथ मी सो दैट हम अपने लिसनर्स के साथ वो शेयर करें, उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाए अपनी मदर्स को स्पेशल फील कराने का ये दिन. और मेरे पास भी कुछ आइडियाज हैं जो कि मैं इस गाने के बाद शेयर करूंगी.

तो आप सुन रहे थे दिल का जो हाल है फ्रॉम द मूवी बेशरम, स्टारर रणवीर कपूर, और इस सॉन्ग को गाया है अभिजीत भट्टाचार्य, और प्यारी सी आवाज जो है वो श्रेया घोषाल जी की है। अभी हमें एक लिसनर का कॉल आया जिन्होंने हमसे नेक्स्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है फ्रॉम द मूवी न्यूयॉर्क, तूने जो ना कहा, और मैंने उनसे उनका नाम पूछा, बट यू नो उन्होंने मुझसे कहा कि नाम में क्या रखा है, आप बस गाने बजा दीजिए, तो ये लीजिए जी। I hope you

तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा, काफी ही प्यारा सा सॉन्ग है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही थी कि हमारी मम्मियां भी तो ऐसे ही हैं, जब हम छोटे थे जब हम नहीं बोल पाते थे तो हम वो फिर भी हमारी बातें समझ जाती थी, सुन लेती थी और हमारी हमेशा से जितनी हो सके हमारी सारी ख्वाहिशों को पूरे किया है। तो इसी सेगमेंट के लिए आने वाले May 10th के मदर्स डे के सेलिब्रेशन के लिए मैंने आपसे पूछा था कि हम क्या गिफ्ट दे सकते हैं अपनी मदर्स को। तो हमारे पास बहुत सारे आंसर्स आए हैं जिनको मैं शेयर करूंगी। प्राची जी ने बताया है कि एज अ मदर जो है आपका पूरा दिन भर आपका दिमाग मतलब हेड टू टो आप कंटिन्यूसली, या तो आप इमोशनली एग्जॉस्टेड हो या फिर फिजिकली एग्जॉस्टेड हो, और आपके दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि कैसे मैनेज करें खुद को, कैसे डेडलाइंस को मिस करें, कैसे आपके बच्चे का स्कूल ना छूटे, उसका सॉकर, उसका ट्यूशन, आपका बच्चा एकदम गेट्स द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, मदर्स कीप इंश्योरिंग दैट। सो उनके लिए एज अ सेलिब्रेशन, एज एन एक्ट ऑफ सेलिब्रेशन एंड गिफ्ट, हमें उनको स्पा एंड मसाज का एक सेशन एटलीस्ट ऑन मदर्स डे गिफ्ट करना चाहिए, विच इज़ अ गुड आइडिया। ऑल्सो हमको एक और कॉल आया फ्रॉम अली जी और उन्होंने कहा कि मम्मियों के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी होता है कि उनका बच्चा जो है ये बोल दे कि माँ मैं हूँ आपके लिए, ना मैं हमेशा यहाँ हूँ, आपको जब मन करे आप तब, आपको जो मन करे सो आप मुझसे बातें कर सकते हैं, आप के लिए मैं हमेशा हूँ। एंड दैट्स क्वाइट स्वीट, वेरी वेरी इमोशनल, कि शायद हमारी मम्मियों को बहुत कुछ नहीं चाहिए, कुछ हल्का फुल्का, कुछ उनके साथ टाइम स्पेंड कर लिया, उनसे बातें कर ली, उनको एश्योर कर दिया, उनको जाके एक आई लव यू ही बोल दो यार, इतना भी काफी है।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: यार बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
3: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
2: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
3: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
2: ये क्या होता है?
3: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
4: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूज किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
5: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
6: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
7: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
8: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
7: Kaise?
8: Page 3 eatery?
7: No, not another restaurant again.
8: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
7: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं.
9: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट.
10: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
11: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
10: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
12: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
13: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day, flavor play.
14: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
15: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 non-profit organization.
16: Hello and welcome back to my show. Aap sun rahe hain Fun Asia Radio aur main hu RJ Desi Girl, also known as Simmi. वैसे अभी हम बात कर रहे थे आने वाले मदर्स डे के गिफ्ट्स के बारे में. बहुत सारे लिसनर्स ने बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दिए हैं, जैसे कि अगर आपकी मम्मा जो है वो सेल्फ केयर गिफ्ट्स वगैरह काफी पसंद करती हैं, क्योंकि अगर आप पूछने जाए ना कि मम्मी आपको क्या चाहिए, तो वो तो यही कहेंगी कुछ नहीं चाहिए यार, रहने दे, पैसे मत बर्बाद कर. पर ज़रूरी नहीं है कि हर गिफ्ट महंगा ही हो. बहुत ही वैरायटी है, मतलब अगर आप के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ किफ़ायती बट स्टिल कुछ प्यारा सा अपनी मम्मा को गिफ्ट दें, तो आप हैंडमेड कार्ड्स दे सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेजेस दे सकते हैं, नोट जार्स बना सकते हैं, कुछ हैंडीक्राफ्ट भी बना के दे सकते हैं जो मॉम स्पेशल हो. और आप डेफिनेटली उस दिन अपनी मम्मा के साथ ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएं, उनको कहीं लेके जाएं इफ़ पॉसिबल. और अगर आपकी मम्मा को पसंद है सेल्फ केयर गिफ्ट्स वगैरह, तो आप स्पा, फेशियल वाउचर्स और स्किन केयर हैम्पर्स दे सकते हैं, मसाज चेयर कुशन दे सकते हैं, सिल्क पिलो केस सेट भी दे सकते हैं. तो डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपने अपने मम्मा के लिए थोड़ा बहुत सोचें, थोड़ा कस्टमाइज करें कि आखिर उनको क्या पसंद आएगा, बिकॉज उनको पसंद आना बेहद ज़रूरी है. आप जो भी दें.

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन चर्च में

Hello and welcome back to my show. You are listening to Funasia Radio 104.9 FM. और अभी इस गाने के पहले हम डिस्कस कर रहे थे मदर्स डे के लिए गिफ्ट आइडियाज के बारे में, और अभी अभी हमें सुरैया जी ने कॉल किया है और वो बता रही थी, एम्फसाइज कर रही थी कि पेरेंट्स का, मदर्स का कितना बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में. हम आज जो भी हैं अपने पेरेंट्स की वजह से हैं, और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ हम अपने पेरेंट्स के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है, क्योंकि हमारी खुद की फैमिलीज होने लगती हैं, खुद के बच्चे होने लगते हैं. और एज अ मदर, एक पूरा जो एक मदर का टाइम जाता है सुबह से शाम, ये सोचने में कि बच्चे को स्कूलिंग लेके जाना है, उनको स्विमिंग लेके जाना है, सॉकर लेके जाना है, इन्हीं सब में. तो अगर अपनी मम्मा को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप उनको टाइम दे, उनको जाके आई लव यू बोल दो यार. इवन समय रैना का अगर आपने इंटरव्यू देखा है तो उसमें वो कहते हैं कि जाइए अपने पेरेंट्स को हक कीजिए और एक बार आई लव यू बोल दीजिए. हम इतना बहुत सोचते हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, अपने प्यार को एक्सप्रेस करने में अपने पेरेंट्स के साथ, इतना सोचना नहीं चाहिए. और शफ़ी ने रिक्वेस्ट किया है काला चश्मा गाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और चश्मा लगा के रहना चाहिए.

हेलो एंड वेलकम बैक फनेशिया फैमिली। और अभी हम वो सेगमेंट कर रहे हैं जिसमें हम मदर्स डे के लिए गिफ्ट आइडियाज सजेस्ट कर रहे हैं और हम अपने लिसनर से भी पूछ रहे हैं। और अभी अभी हमें एक लिसनर से कॉल आया है सलीमा जी की तरफ से, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वी शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ आवर मदर्स। अनफॉर्चुनेटली उनकी मम्मी जो हैं फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, बट वो उनको बहुत याद करती हैं। वो उनके साथ घूमना फिरना, जो डिनर्स और उनको जो जो चीज़ें पसंद है उसको काफ़ी मिस करती हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अभी आपको जो भी टाइम है ना, जितना से जितना टाइम है वो अपनी मदर्स के साथ बिताइए। आई थिंक द बेस्ट गिफ्ट टू योर मदर्स वुड बी टू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम, यू नो। एंड शी टोल्ड मी कि आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए बिफोर इट इज़ टू लेट एंड यू नेवर नो। जस्ट होप कि खुदा ना करे, भगवान ना करे कि ऐसा हो, बट यू नो अच्छा लगेगा आपकी मम्मी को कि अगर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो प्लीज इंश्योर कि वो दिन आप उनको डेडिकेट करें। थैंक यू।

अंजी मेक द वे फॉर अकीरा एंड मेक द वे फॉर ममास टू। हम डिस्कस कर रहे थे मदर्स डे के गिफ्ट आइडियाज के बारे में और बहुत ही इंटरेस्टिंग सजेशंस आया है। आई थिंक अगर मुझे आज का रेट करना हो कि द बेस्ट गिफ्ट क्या होगा, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वी शुड स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विथ आवर मदर्स, दैट्स डेफिनेटली टॉपिंग द लिस्ट। बट अभी अभी गौरवी जी का फोन आया है और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी मम्मा को लास्ट ईयर मदर्स डे पे वॉलग्रीन्स से 20 पिक्स के एक फोटो बुक दी थी एंड बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आई थिंक 25 to 30 dollars का है, ये वॉलग्रीन्स में अवेलेबल है। एंड अगर आपको कुछ कूपन कोड वगैरह मिल जाए तो 50% ऑफ होके ये 25-30 dollars बन जाता है, विच इज़ क्वाइट कूल आइडिया। और वो बोलती है कि यूजुअली पेरेंट्स का क्या होता है, अगर आपकी मम्मा जो है थोड़ी एजेड हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करना टेक सैवी नहीं है, तो वो अगर उनके पास कुछ फिजिकल कॉपी हो, फोटोज लगे हो दीवार पे या कहीं भी, तो वो उनको बार बार देखती हैं और रेमिनिस करती हैं सारी मेमोरीज अपने बच्चों के साथ। एंड वो गौरवी जी बता रही थी कि उनकी मम्मा जो है हमेशा बात करती रहती कि आज भी मैंने वो फोटो देखी, तेरी वो वाली बात याद आ गई, इसके पहले ये हुआ था, तब तुमने ये किया था। ठीक है, सो ये काफ़ी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एट टाइम्स। और आप एक रीज़न दे देते हो अपनी मम्मा को खुश रहने के लिए और उनकी यादें ताज़ा करने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। और आपके पास अगर कुछ और बेटर सजेशंस हैं तो प्लीज़ कॉल कीजिए एंड बताइए 972-235-5555।

थैंक यू सो मच हमारे सारे लिसनर्स को जिन्होंने भी कॉल किया और हमें और सारे बाकी लिसनर्स को बताया, सजेस्ट किया नए नए गिफ्ट आइडियाज फॉर मम्मीज. एंड अभी अभी सुवर्णा जी का कॉल आया है जिन्होंने बहुत ही प्यारी सी बात शेयर की है कि द बेस्ट गिफ्ट दैट वी कैन गिव आवर मदर्स इज कि जब भी उसको ज़रूरत हो, उनको ज़रूरत हो, हमको उनके पास होना चाहिए. At times it becomes difficult, I understand, but try to comfort your mothers. उनके साथ रहने की कोशिश कीजिए जब भी उनको ज़रूरत हो. कोशिश कीजिए कि यू आर जस्ट वन कॉल अवे फ्रॉम योर मदर्स. आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए कि वो जो है आपसे कुछ भी शेयर कर ले बेझिझक आराम से. तो दैट्स ऑल. आई थिंक वी आर नियरिंग द एंड ऑफ द शो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो एंड कीप लिसनिंग टू गुड म्यूजिक.

very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Fun Asia Radio. Sun rahe hain aap. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Main hu Kiran aapke saath Monday to Friday 2:30 baje se 5 baje tak main aur aap ek saath rehte hain aur lekar aati hu aapke liye bahut kuch. Every day we bring a different flavor aur Monday is totally dedicated to you. Ji haan, filmi farmaish ke saath hazir hoti hu Mondays ko. Pasand aapki, aapke man pasand radio station pe aapki man pasand RJ ke saath aap अपनी पसंद की फरमाइश मुझसे कर सकते हैं. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. 90 से आगे का कोई गाना थोड़ा सा आप बताइएगा और बहुत ज्यादा कोई सैड गाना ना बता दीजिएगा. थोड़ा सा मूड बरकरार रखना है. सब लोग अगर ऑफिस से निकल रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हैपनिंग होना चाहिए मौसम को. तो एक बार फिर आपको करती हूँ वेलकम. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. उम्मीद करती हूँ यू हैड अ लवली लवली वीकेंड.

अगर आप खाना चाहते हैं बिल्कुल घर जैसा खाना, जी हाँ जी, लंच का टाइम तो हो ही रहा है, बट इट डजंट मैटर आपने कब जाके खाना है, मगर अगर आपको चाहिए रेस्टोरेंट का खाना लेकिन घर का जायका, तो तंदूरी फ्लेम जो कि गार्लैंड में लोकेटेड है, दैट इज द बेस्ट स्पॉट फॉर यू. तमाम नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स जो हैं आपके, जैसे कि तंदूरी प्लैटर्स, रिच करीज, कबाब्स, यू नो, फ्रेश हॉट नान्स, एवरीथिंग इज मेड रियली फ्रेश. बिल्कुल घर के तरीके की रेसिपीज इस्तेमाल की जाती हैं. आप बहुत इंजॉय करेंगे. इंजॉय कीजिए इस होम स्टाइल कुक्ड मील को एट तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड. और जी, आपकी फरमाइशों का सिलसिला आना शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया है. और एहसन साहब, आपकी रिक्वेस्ट पे दिस इज दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे.

है मंडे टू फ्राइडे. सो अगर आप ऑथराइज हैं यूएस में काम करने के लिए एंड यू आर रेडी टू टेक ऑन एक्साइटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, देन दिस मे बी अ नेक्स्ट बिग मूव फॉर यू. यू कैन सेंड योर रेज्यूमे. देर आर टू वेज ऑफ सेंडिंग योर रेज्यूमे. वन, यू कैन सेंड इट थ्रू ईमेल एंड वन, यू कैन मेल देम डायरेक्टली. ईमेल सबसे पहले नोट कर लीजिए टू सेंड योर रेज्यूमे. दैट ईमेल आईडी इज गौतम एट techsunsoft.com. दैट इज GAUTAM एट द रेट tech techsunsoft.com. या फिर आप अपना रेज्यूमे मेल कर सकते हैं एट दिस मेलिंग एड्रेस, विच इज 12800 वेस्टरिज बुलेवार्ड, स्वीट 229, लोकेटेड इन फ्रिस्को. दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी जो आप अवेल कर सकते हैं बाय यू नो अप्लाइंग एट TechSunsoft Inc. एंड दिस नेक्स्ट रिक्वेस्ट इज प्लेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अशोक. अशोक, ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम दिल है कि मानता नहीं.

1991 की कल्ट क्लासिक रोमांटिक कॉमेडी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई अपनी यू नो स्टोरी लाइन के लिए, केमिस्ट्री जो कि हमें आमिर खान और पूजा भट्ट के दरमियान देखने को मिली. बट इट वॉज लार्जली नोन एज एन अनऑफिशियल रीमेक ऑफ द 1956 फिल्म चोरी चोरी, और वो भी एक ऑफिशियल अनऑफिशियल रीमेक थी एक 1934 की हॉलीवुड फिल्म की, विच वॉज It Happened One Night. So, सिलसिला बहुत, मतलब आप देखिए अब तो खैर 1934 का जिक्र करो तो 2026 चल रहा है, तो 90 years ago की हम बात कर रहे हैं जो पहली बार हॉलीवुड में बनी थी अबाउट 1992, It Happened One Night. और कुछ कहानियाँ इतनी पॉपुलर और इतनी ज़बरदस्त होती हैं कि उन्हें किसी भी एज और उसमें सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट उसकी हो तो वो मूवी पॉपुलर और सुपरहिट होती ही होती है. अगला गाना आपके लिए लाइंड अप है, फिल्मी फरमाइश का सिलसिला जारी है, पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ. कीप कॉलिंग.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे
4: प्रितेश कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा
5: अरे रिलैक्स सब तुम्हारा ही तो है
4: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा
5: वेट व्हाट
6: यस अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है
7: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में The right way with estate planning.
6: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
8: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती उनके लेवल्स होते हैं लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला थोड़ा नॉस्टैल्जिया थोड़ा कंफर्ट लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना फुल पंजाबी मोड ऑन फुल्ली लोडेड और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल स्लो कुक्ड कीमा मटर रिच बोल्ड नो कॉम्प्रोमाइजेस
6: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
9: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai. Transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar. Unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai. Taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता. पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है, this is home. Welcome to देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. North से South, street से festive. हर टेस्ट, हर कल्चर, एक ही जगह. Pure देसी, full मंडी experience. Unmatched variety, unbelievable deals, only at देसी मंडी. देसी मंडी, powered by देसीज, loved by डालस.
11: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
12: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी
11: के टू ड्राइव मतलब
12: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है
11: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
12: 100%
13: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Cato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
16: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: Bawarchi Biryani is in Plano, bigger, better and the best now serving everyday lunch specials. Thalis, biryani combos and refreshing Irani chai with delicious Indian snacks. Freshly made sweets and bakery items. Please walk into Bawarchi Plano or visit bawarchiplano.com.
21: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
22: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनेजिया रेडियो।

सुन रहे हैं आप 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. मैं हूं किरण आपके साथ आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण लेके मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM टू 5 PM. आप भी मेरे साथ हैं 9722355555 के थ्रू. मंडेज आर वेरी स्पेशल क्योंकि लेके आती हूं आपके लिए फिल्मी फरमाइश यानी कि पसंद आपकी आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे आपकी मनपसंद आरजे के साथ जो मौजूद हूँ मैं. 90 से आगे के कुछ मजे के गाने रिक्वेस्ट कीजिए जी. और ये जो अगला गाना है रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, डेडिकेट भी कर सकते हैं, एनीथिंग पसंद आपकी होनी चाहिए. और ये जो गाना है ये हमारी बहुत प्यारी कॉलर सबा डेडिकेट कर रही हैं अपने हस्बैंड फयाज को. सो फयाज साहब दिस इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम योर डार्लिंग वाइफ.

जी हाँ, आप अपनी रिक्वेस्ट, अपनी डेडिकेशंस, अपने लव्ड वंस को यहाँ राइट हेयर ऑन 104.9 एफएम पे कॉल करके कर सकते हैं, क्योंकि ये चल रहा है फिल्मी फरमाइश, आपकी पसंद के गाने आपकी मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, और मनपसंद आरजे तो मैं मौजूद हूँ। अच्छा, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनना मैंने। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ एक बहुत सीरियस बात, और वो ये है कि अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में, इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है, तो आप जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। एक तो आपको अपना ख्याल रखना है, ऊपर से इंश्योरेंस, पेपर वर्क, लीगैलिटी, देयर इज सो मच गोइंग ऑन, सो मेनी निटी-ग्रिटीज टू टेक केयर ऑफ, एंड यू डेफिनेटली नीड एन अटर्नी जो आपके लिए ये सब काम कर सके, एन एक्सपीरियंस्ड अटर्नी हु नोज हाउ टू डील विद ऑल दीज थिंग्स, एंड दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा। ना सिर्फ ये कि वो और उनकी टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, दे विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, और द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ पे नहीं करना जब तक कि आप विन नहीं कर लेते अपने केस को। सो इट इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग एज स्ट्रेसफुल एज दिस, और समवन यू नो is going through something as stressful as this, तो आपका best gift होगा उन्हें ये number. Let them tell them to give them a call for free consultation, or you give them a call for free consultation, and let attorney Umar Khwaja take care of your problems where this is concerned. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is their number, or you can visit their website, which is attorneyomar.com. OMAR, attorneyomar.com. And before we play on the next song requested by Chitra Ji, I must tell you that the views and opinions expressed in these live announcements, as well as the interviews that we do here on the station, are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ.

हेलो ब्रदर से सुन रहे थे आप ये गाना, और ये था जी इमरान साहब की रिक्वेस्ट पे. मैं ले रही हूँ आपकी रिक्वेस्ट और 4:30 बजे तक आपकी, एक्चुअली 4 बजे तक आपकी फरमाइशों का सिलसिला जारी रहेगा. वी स्टिल हैव अबाउट 43 मोर मिनट्स. कॉल कर सकते हैं आप 9722355555 पे. और आपको बताऊँ जी कि अगर मतलब एक आपको ऐसे स्टोर जाना है जहाँ आप सारी अपनी देसी ग्रोसरीज खरीद लें और आपको 4 डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों के चक्कर ना लगाने पड़े, तो वो स्टोर है देसी मंडी. जी हाँ, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन, लोकेटेड इन लुइसविल. और उनकी ग्रोसरीज पे तो ब्रिलियंट ऑफर्स लगती ही रहती हैं, चाहे वो सब्जी का सेक्शन हो, डेयरी सेक्शन हो, आपके दाल चावल रेगुलर जो आपने 1000 हमारी घर की जरूरियात होती हैं, मीट सेक्शन, दे हैव अ वेरी ब्रिलियंट मीट सेक्शन, और वेरी क्लीन, वेरी ऑर्गेनाइज. आपका यू नो गोश्त खरीदने का वहाँ से दिल करता है. और उसके अलावा जो अगर आपकी पूजा की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपने पूजा की सामग्री खरीदनी है, कोई एक्सेसरीज खरीदनी है, तो बहुत बड़ा उनका पूजा का सेगमेंट है, सेक्शन है, जहां से आप पूजा की अपनी शॉपिंग कर सकते हैं. और उसी के साथ जब आप शॉपिंग कर कुरा के पूरे थक जाएंगे तो आपको भूख लगी है, तो उसका भी इंतजाम है उनके पास, बिकॉज दे हैव एन एक्टिव वर्किंग रेस्टोरेंट इन द शॉप, दैट इज देसी मंडी. और ब्रिलियंट खाना सर्व करते हैं आपको, और खाने पे डीले भी लगाते हैं. आजकल डील चल रही है बोगो की, बोगो का आप मतलब सुनते ही बंदा कहता है किस चीज पे बाय वन गेट वन मिल रहा है जी. तो सबसे पहले तो ये कि वीकडेज में 5 बजे शाम से रात 9 बजे तक, यानी कि ये 4 घंटे बोगो की डील्स चल रही हैं देसी मंडी के रेस्टोरेंट पे. और मंडे और वेंसडे को अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस. और अगर आप ट्यूसडे और थर्सडे को जाएंगे तो यू विल गेट बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. तो आप जरूर जाइए, नो मिक्स एंड मैचेस अलाउड, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, लेकिन आप जाएंगे तो आप डेफिनेटली खाना भी इंजॉय करेंगे, शॉपिंग भी कर लीजिए सारी, और मतलब एक काइंड ऑफ एक फैमिली टाइम हो जाएगा आपका. तो जाइए, इंजॉय कीजिए. दिस इज देसी मंडी लोकेटेड इन लुइसविल, the biggest South Asian grocery store in town. तो अब इस गाने के साथ वापस आएंगे तो बात करूंगी आपसे. फ्राइडे को एक बहुत ही जबरदस्त इवेंट हुआ जिसपे मुझे मिले कुछ बड़े ही अमेजिंग लोग. We will talk about that.

जी हाँ जी, फ्राइडे को हुआ एक बहुत ही ब्रिलियंट इवेंट जिसकी हम बहुत ज़्यादा आपको बता रहे थे कि ज़रूर आइए, और जो लोग आए उन लोगों ने किया बहुत ज़्यादा एन्जॉय. एंड दैट इवेंट वॉज द जैम लाउंज. एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल इवेंट. आप सबकी पार्टिसिपेशन, जिन्होंने आके हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ आवाज़ से आवाज़ मिलाई, गाया, ऑल लॉट्स ऑफ आर्जेस वर देयर. एंड आप लोगों की आमद, आप लोगों की प्रेजेंस इज वॉट मैटर्ड द most. So everything that we do, it is to bring you all together and we as a community can enjoy and have a blast. Aur wahi hua jam lounge mein. Acha ji, to jam lounge mein jo hai wo mujhe bahut sare log mile. Aap sabka bahut bahut shukriya jinhone jo mile, jinhone pehchana, jinhone baat ki, jinhone appreciate kiya. Aur kyunki hum Friday ko karte hain bachchon ka segment, yani ke kids junction, to mujhe kuch bachche bhi mile wahan pe, and that was the best part of my डे ऑफ कोर्स. क्योंकि इट वॉज सो स्वीट टू मीट एवरी चाइल्ड. जो बहुत सारे दो तीन चार बच्चे जो मुझसे फोन पे बात करते हैं, अपनी पसंद के गाने बताते हैं, एंड आई फील आई हैव अ कनेक्शन विद देम, एंड इट वॉज सच अ प्लेजर. थैंक यू पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिन्होंने अपने बच्चों को लेके आए और जिन्होंने खास मुझसे मिलने की रिक्वेस्ट की कि मिलना है, बच्चों को मिलाना है, और बच्चों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, कुछ एक दो तस्वीरें भी ली थी आप लोगों ने. मैं तो अपने फोन से ली नहीं. अगर आपने ली है तो मुझे आप सुनहरी किरण, जो कि इंस्टाग्राम पे मेरा अकाउंट है, उस पर टैग कीजिए अपनी तस्वीर, या फिर मुझे सुनहरी किरण पे प्राइवेट मैसेज कर दीजिए तस्वीर अगर आपने ली है तो. स्पेशली अलीजा की मामा, आपने जो तस्वीर ली थी जरूर टैग कीजिए मुझे. आई वुड लव टू शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया अकाउंट. एंड अप्रिशिएट ऑल द किड्स जिन्होंने जो है मुझे इतना प्यार दिया, और बच्चों के साथ बच्चों के पेरेंट्स ने. सो वी हैड एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल जैम इवेंट सेशन. नेक्स्ट टाइम जब द जैम लाउंज आएगा तो आप जरूर मिस मत कीजिएगा. यू really don't want to miss such an amazing evening. Aur isi ke saath, this is a dedication going out to Saba from her husband Fayaz.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works, engineered for excellence.
3: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
4: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज थ्री में होना मेरी गारंटी है।
3: कैसे?
4: पेज थ्री ईटरी?
3: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
4: डूड, इट्स पेज थ्री। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
3: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
5: पेज थ्री ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
6: Immigration attorneys in the DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
7: Chicken banana. Chicken banana?
8: Bro, banana nahi. Banana. Matlab, make the chicken right.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: Kabhi aisa lagta hai ki decisions aap le rahe ho par results control meaning career ruk sa gaya hai. रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सस. चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस. कॉन्टैक्ट 9453387670. ईमेल astro111city@gmail.com. अनीता चुंद्रू, your life with right direction.
11: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
12: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
13: आती है यार, बहुत आती है. इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
13: सच में? बिल्कुल घर जैसा.
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
1: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodiyal on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
14: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान. गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में. मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से. सब एक ही छत के नीचे. 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए. आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक. एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री. माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो.

0: आपकी फरमाइश, आपकी पसंद के गाने चल रहे हैं जी. अनदर 20 मिनट्स जो मैं आपकी फरमाइश ले रही हूँ, 4 बजे तक फरमाइशों का सेगमेंट जारी रहेगा और उसके बाद एक घंटा और आधा घंटा हम लेके आएंगे आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग म्यूजिक ब्लॉकबस्टर बीट्स के साथ. साथ ही वेदर, ट्रैफिक, करेंसी, गोल्ड प्राइस एंड सो मच मोर दैट आई हैव लाइंड अप फॉर यू. 4:30 से 5 बजे तक आपके साथ कनेक्टेड होंगे जी संजय माथुर जी फ्रॉम द माथुर लॉ ऑफिसेज, जो आपके लेंगे क्वेश्चंस लाइव. आप अपना कोई भी सवाल, सिविल लिटिगेशन, इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, आप कॉल करके अपना सवाल संजय माथुर जी से पूछ सकते हैं. सो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू हैव आवर शो टुडे. थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर ऑल योर कॉल्स. आपकी रिक्वेस्ट, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट, हर, जैसे कहते हैं ना, हर इंसान की एक अलग पसंद होती है और आपकी पसंद डेफिनेटली इट इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेशल एंड वेरी क्लोज टू यू. सो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, एंड दिस कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. देसी पिज्जा अगर आपने खाना है, मतलब पिज्जा खाने का तो बच्चे तो खैर बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपका दिल है पिज्जा खाने का बट यू वॉन्ट समथिंग देसी, सम देसी ट्विस्ट इन दैट पिज्जा, देन फन पिज्जा किचन इज द प्लेस फॉर यू. वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन डज नॉट मैटर, बिकॉज दे हैव समथिंग ब्रिलियंट फॉर एवरी काइंड ऑफ पैलेट. तो जरूर funpizzakitchen.com पे लॉग ऑन कीजिए, चेकआउट कीजिए उनके पिज्जाज, उनका मेन्यू एंड देयर लोकेशंस एंड सो मच मोर दैट इज अवेलेबल एट funpizzakitchen.com. और ये टाइम है आपके पास $10 का गिफ्ट कार्ड हासिल करने का ऑन ऑनलाइन ऑर्डर्स ओनली. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फन पिज्जा किचन फ्रिस्को इन पर्सन जाना पड़ेगा और अपने कार्ड को कलेक्ट करना पड़ेगा. सो प्लीज इसका ध्यान रखिएगा. इफ यू कैन मेक दैट ट्रिप टू फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को, दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू गेट योर $10 कार्ड. और दूसरा ये कि अगर आप पिछले महीने में फन एशिया के किसी भी शो पे ये गिफ्ट कार्ड जीत चुके हैं तो थोड़ा सा दूसरों को मौका दीजिए, बिकॉज यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ, सो यू माइट नॉट गेट ऑनर्ड इफ यू आर रिपीटेड विद इन द मंथ. तो ये तो होगी आपके लिए ये बात. और कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में अब मैं आपको वेलकम करती हूँ. दिस इज यू नो, जैसे हम कह रहे थे, हर बंदे की एक अपनी पसंद होती है, अपनी रिक्वेस्ट होती है, और यू नो, व्हाटएवर गोज ऑन विद यू एट दैट मोमेंट, कई बार हमारी पसंद उस चीज से अफेक्ट हो रही होती है. तो आप मुझे कॉल करके बताइए कि इस वक्त आपके जहन में ऐसी क्या बात चल रही है जो आप बताना चाहते हैं, चाहती हैं, शेयर करना चाहते हैं, और उसकी निस्बत से कोई गाना जो आपके जहन में चल रहा हो, या कोई मोमेंट, या कोई मूवी, एनीथिंग दैट इज यू नो, जो आप इस वक्त जिस मोमेंट में हैं, वो मोमेंट आपको क्या याद दिला रहा है, किसी मूवी का याद दिला रहा है, किसी गाने का याद दिला रहा है, या किसी बात का याद दिला रहा है, किसी स्टोरी, किसी मेमोरी का याद दिला रहा है. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. आप कॉल करके कॉन्वर्सेशन कॉर्नर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस इज ब्रॉट टू यू बाय फन पिज्जा किचन. यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग $10 गिफ्ट कार्ड बाय फन पिज्जा किचन. वंस अगेन द नंबर इज 9722355555. कॉल कीजिए, बताइए इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा है. यू वांट टू, यू थिंकिंग अबाउट अ सॉन्ग, आर यू थिंकिंग अबाउट अ मूवी, आर यू थिंकिंग अबाउट अ स्टोरी, आर यू थिंकिंग अबाउट अ मेमोरी जो आपके साथ हुई हो कभी, जो आप शेयर करना चाहते हो. तो फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: माय नेम आयशा.
0: जी आयशा, बताइए क्या चल रहा है आपके जहन में इस वक्त?
1: इस वक्त तो मैं बहुत खुश हूं.
0: ओके, एंड व्हाई इज दैट?
1: इसलिए कि ना, एक साथ मैं पहले काम करती थी फिएस्टा में, फिर उसके बाद मेरी जॉब खत्म हो गई, मैं फंक्शनल चली गई. एक साल मैंने जॉब नहीं करी, तो आज मेरी एप्लीकेशन दी किसी रेस्टोरेंट में, तो उन्होंने कहा कि आपका नेक्स्ट वीक इंटरव्यू होगा, तो मैं बड़ी खुश हो रही हूँ.
0: अच्छा, तो आपको जॉब मिल गई है बेसिकली?
1: अभी इंटरव्यू का उन्होंने बोला, ऑलवेज आती हूँ तो वो टाल देते थे.
0: जी जी, देखिए ये कितनी जबरदस्त बात आपने शेयर की. आपके लिए तो मैं गाना डेडिकेट करूंगी आज, मैं ऊपर आसमान नीचे.
1: बस आप दुआ करें कि मेरा काम हो जाए. खुदा की कसम, मैं बच्चे भी नहीं है और अकेली रहती थी, तो मैं जॉब मेरी खत्म हो गई, वहाँ भी जाती हूँ, उनको भी कहती हूँ बार बार कि मुझे जॉब दो.
0: जी जी,
1: तो अब बस दुआ है कि आप भी दुआ कीजिएगा.
0: Absolutely, ji. All our prayers going out to you. Fun Asia brings the community together. Thank you, Aisha, and good luck for your new venture. Keep listening. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ इन अ बिट. ये तो था जी आयशा के दिल में क्या चल रहा है, उन्होंने हमें बताया. अगर आपके दिल में कुछ चल रहा है, कोई मूवी याद आ रही है, कोई आपके साथ इवेंट हुआ है जिससे आपको कोई गाना याद आ रहा है, जैसे आयशा की बात सुन के मुझे गाना याद आ गया, आज मैं ऊपर आसमान नीचे. आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिससे आपको कोई गाना याद आया, कोई मूवी याद आई, कोई बात याद आई, तो जरूर शेयर कीजिए. 9722355555 स्टूडियो का नंबर.

आ गया आज मैं ऊपर आसमान नीचे। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इवेंट हो रहा है जिसे आपको कोई गाना याद आया, कोई मूवी याद आई, कोई बात याद आई, तो जरूर शेयर कीजिए। 9722355555 स्टूडियो का नंबर।

0: Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hi, my name is Sabha.
0: Ji Sabha, bataiye, what is going on in your mind right now?
1: अभी तो माइंड में यही है कि मेरे बेटे की बर्थडे आ रही है 6 को, तो बस ये सोच रही हूं उसको कैसे प्लान करना है, क्या प्लान करना है.
0: अच्छा ठीक है, मई 6 को. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी हैप्पी बर्थडे टू योर सन.
1: थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू. ठीक है सवाल, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर यू गोइंग टू हैव अ लवली टाइम. और सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. अच्छा, सभा के फोन से पहले हमें एक और फोन आया, दैट इज प्रियंका. प्रियंका के जहन में चल रहा है मदर्स डे, और वो कर रही हैं अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस. ऑफ कोर्स जब इस तरह के मोमेंट्स आते हैं और कोई इस तरह का डे सेलिब्रेशन का आता है, तो हम थोड़ा सा ज्यादा आई थिंक सब बात कर रहे होते हैं, तो वो मेमोरीज और वो जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा याद आने लगती हैं. तो आप 9722355555 पे कॉल करके बता सकते हैं. अभी भी 2-3 कॉल्स की जगह है मेरे पास, और उसके बाद हम इस सेगमेंट को करने वाले हैं रैप. दिस इज योर कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, ब्रॉट टू यू बाय फन पिज़्ज़ा किचन विद सुनहरी किरण.

0: Fun Asian Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hi, this is Jayashree.
0: Hi, Jayashree. Bataiye, kya chal raha hai aapke mind mein? What thought is, coming up?
1: Oh, bahut kuch. Tomorrow I have to go to office. I have to drop my son, but also come back before my daughter comes home. So I'm like, how do I make sure everything falls in place to make sure this is all taken care of? Yeah.
0: Absolutely. Matlab, you have a very, very busy day and too many things that are happening around you, right?
1: Yes.
0: All right. Jayashree, thank you so much. Sunti rahiye, main abhi even announce karti hoon in a bit. Acha ji, ye to hua aapke liye conversation corner. Thank you for sharing your thoughts. What is going on in your head right now? Kyunki hamare ek waqt mein hamare zehen mein kitni sari cheeze chal rahi hoti hain. Jaise ki Aisha ne bataya ki unko job mil gayi, job ka interview aaya hai ya call aaya hai, to wo usse bahut khush hain. Aur Priyanka ne bataya ki Mother's Day aane wala hai, to wo thoughts unke dimag mein aa rahi hain, unki mother ki memories unke paas aa rahi hain. Saba ne hame apni ek baat batayi aur usi ke साथ जयश्री ने जो सभा ने हमें बताया कि उनके बेटे का बर्थडे आने वाला है, और साथ ही साथ जयश्री जिन्होंने हमें बताया कि जी किस तरह से कितने सारे काम हैं जो उन्होंने करने हैं और बाकी थॉट्स क्या आएंगी, ये काम ही नहीं खत्म होते इंसान के. तो जी थैंक यू फॉर शेयरिंग लेडीज. एंड आज की जो हमारी विनर है वो है आयशा. आयशा अगर आप मुझे सुन रही हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल ताकि मैं आपकी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकूं एंड वी कैन सेंड इट टू फन पिज्जा किचन. फॉर ऑल ऑफ यू हु आर लिसनिंग एंड हु पार्टिसिपेटेड, थैंक यू सो मच.

ऑलराइट जयश्री, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज कॉल कीजिए. यू आर द नेक्स्ट लकी विनर इन लाइन. मुझे आयशा का कॉल नहीं आया, सो जयश्री प्लीज गिव मी अ कॉल सो दैट आई कैन टेक योर इन्फॉर्मेशन फॉर फन पिज्जा किचन $10 gift card.

0: the Dill of Dallas. Heart to Heart, Fun Asia.
1: All right, जी चल रहा था ये कॉन्वर्सेशन कॉर्नर का सेगमेंट जिसमें आप सबने किया मुझसे अपने दिल की बात कि क्या चल रहा है आपके दिल में. अच्छा जी, फोन कॉल्स का मैं इंतजार कर रही हूँ. प्रियंका, अगर आप सुन रही हैं तो मुझे प्लीज कॉल कीजिए ताकि मैं आपका इन्फॉर्मेशन ले सकूँ फॉर फॉरवर्डिंग टू फन पिज्जा किचन. क्योंकि मेरे पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट बैक टू यू इफ यू आर द लकी विनर एंड यू नो आई डोंट वॉन्ट यू टू मिस आउट ऑन दिस. सो अगर आप सुन रही हैं तो कॉल कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम इज ऑलवेज एन ऑप्शन.
2: But I do.

All right, जी, with this last song हम कर रहे हैं हमारे फरमाइशी प्रोग्राम यानी कि फिल्मी फरमाइश सेगमेंट का इख्तिताम. 4 बजे से 5 बजे तक मैं आपके साथ मजीद मौजूद हूँ. From 4 to 4:30 we will bring Bollywood blockbuster beats as well as from 4:30 till 5 Sanjay Mathur ji from Mathur Law Offices will be connected with us and he will be taking your calls live. Get ready to call if you have any question.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
7: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
6: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
7: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
6: कैसे?
7: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
6: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
7: या कैरेट लेन काइंड.
8: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carrot Lane, a Tata product, now open in Frisco.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
7: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
12: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
7: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
12: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ.
11: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
13: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई.
14: Astrology readings for guidance only and results may vary.
15: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
16: बेटा, इतनी देर से बैठे हो, होमवर्क हुआ?
17: मम्मा, कोशिश तो कर रहा हूँ पर समझ में नहीं आ रहा है.
16: रोज का सेम प्रॉब्लम.
18: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमिटी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मैकिनी आईएसडी स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
19: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 टू 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रांग क्रिटिकल थिंकिंग।
18: कन्वीनिएंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
7: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। लुमिटी लर्निंग सेंटर, बिल्ड मास्टरी, अनलॉक पोटेंशियल।
20: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
21: कितने आदमी थे?
22: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

और अजी वक्त है आपको करेंसी अपडेट देने का. मंडे मे द 4th 4:19 पीएम इन द स्टूडियो. और यूएस डॉलर कहां स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो आज ट्रेड कर रहा है 0.85 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73 विद रिस्पेक्ट टू 1 यूएस डॉलर. इंडियन रुपी 95.23 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.75 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर. नेपालीज रुपी 152.44 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि बांग्लादेशी टका 122.72 बांग्लादेशी टकर्स आर ट्रेडिंग फॉर 1 यूएस डॉलर.

और करेंसी अपडेट के बाद हम इस गाने पे गए थे. इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट के गोल्ड कहाँ स्टैंड कर रहा है जी. सो अकॉर्डिंग टू goldprice.org राइट नाउ एट 4:23 PM इन द स्टूडियो सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम इस वक्त 1 ounce गोल्ड की कीमत है $4,522.94 जबकि 1 gram सोने की कीमत राइट नाउ इज $145.42. कल की निस्बत यानी कि संडे जो कल था उसकी निस्बत आज 1 gram सोने की कीमत में $3.43 की कमी देखने को मिली जबकि 1 ounce सोने की कीमत में $106.95 की कमी देखने में मिली. But that's pretty much all that I have for you where your finance matters right here on Sunehri Kiran.

इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अगले गाने के साथ एक शॉर्ट ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ कनेक्टेड होंगे संजय माथुर जी ऑफ माथुर लॉ ऑफिसेस. आपके क्वेश्चंस लेंगे लाइव राइट हेयर ऑन इंफानेशिया स्टूडियो 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर. यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लॉ, इंजरी, फैमिली लॉ एज वेल एज इमिग्रेशन लॉ, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं अपना सवाल करने के लिए. अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं और आपको माथुर जी की आवाज आ रही हो कि वो किसी और सवाल का जवाब दे रहे हैं, तो अपनी लाइन में अपने स्पॉट को होल्ड कीजिएगा. दैट मींस इफ यू कैन लिसन टू हिम, दैट मींस यू आर नेक्स्ट ऑन लाइन टू आस्क अ क्वेश्चन. सो डू नॉट ड्रॉप योर लाइन एंड लूज योर स्पॉट इन दैट लाइन. तो इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं ब्रेक की तरफ जी. ब्रेक से वापस आकर आई विल सी यू विद लाइव क्वेश्चंस विद संजय माथुर जी.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनी शो पे।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर। एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर।
5: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस।
4: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर।
5: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: Sab kuch saaf rakh sakte ho.
10: Par mujh pe kisi ki nazar nahi jaati. Koi nahi sochta mere baare mein.
11: Kyunki? ये कौन बोला?
10: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
12: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
13: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
4: Get ready for the smoky, flavorful goodness of Tandoori Chicken Pizza. Perfectly marinated tandoori chicken, mildly spiced, tender, and bursting with aroma. Layered over creamy cheese and a golden crust. It's the perfect balance. Not too spicy, not too mild. Just right for every flavor lover. Taste the magic of the tandoor on your favorite sliced tandoori chicken pizza. Only at Fun Pizza Kitchen. Fun Pizza Kitchen, where every slice tells a story.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
16: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
18: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: आप लेडीज ने अपने आप को देखा, देखा ना,
1: सो ब्यूटिफुल, सो एलिगेंट, सो प्रिटी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव मैन. कीप स्प्रेडिंग दैट जॉय. आई विल बी राइट बैक ऑन द अदर साइड, डोंट गो एनीवेयर. दिस इज फनेशिया.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो.
3: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फनेशिया पे.
4: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
5: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
6: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
8: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili, and soft bunny cubes soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
9: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
10: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
9: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
11: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
12: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
11: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
11: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो. एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
12: 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Collin and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
17: Planning to buy a perfect home or make a smart investment in India? Now it's easier than ever. Gruh Pravesh, India Property Expo in Frisco. Meet top developers from Hyderabad, Bengaluru, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR all under one roof. Explore 200 plus projects and find the right property that fits your plans. 9th and 10th of May, Hyatt Regency Frisco, Dallas, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry and free parking. Biggest India Property Expo by My Square Feet.

जब मैं एग्जाम देने निकलता था ना, एग्जाम देने, बड़े लोग एग्जाम देने जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे मम्मी खिलाती है जी वो दही चीनी के, भाई शुभ होता है, मीठा खा के जाना चाहिए। मेरे घर में क्या होता था कि जब मैं एग्जाम देने जाता था तो मेरी माँ पूछती थी पेन कॉपी अपना गत्ता, वो जो बोर्ड होता था जिसपे लिखते थे, मतलब शीट आगे लगाते थे, गत्ता अपना कार्ड वार्ड सब ले लिया। मैं कहता था हाँ, पीछे से पापा की आवाज़ आती थी, बेटा ये तो सब रख लिया, हमारी इज्जत भी रख लेना। पर कुदरती ऐसा होता था कि इज्जत रखी जाती थी यार, फाइनल में पास हो ही जाता था मैं। क्यों? क्योंकि यार बात ऐसी थी कि मैं वैसे तो बड़ा होशियार हूँ, आपको पता ही है सबको, आई एम वेरी स्मार्ट गाय यू नो, बट मतलब लुक्स वाइज भी और वैसे भी दोनों तरफ से, समझ गए आप। तो मैं बचपन से ज़्यादा क्रिकेट और स्पोर्ट्स की तरफ था। आई यूज टू प्ले नेशनल्स फॉर पंजाब एंड हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, खेलता था क्रिकेट एंड उसी में ज़्यादा ध्यान रहता था। बट आप पढ़ाई का सब सोचा था तो यही करते थे कि भाई बस पास होना चाहिए, उतनी पढ़ाई करेंगे। एंड उसके ऊपर फिर हमारे जो प्रिंसिपल थे मिस्टर हैरोल्ड कार्वर, वो एंग्लो इंडियन थे, उनका स्पोर्ट्स की तरफ जो लगाव था बहुत ज़्यादा था। और वो क्या करते थे कि हमें 10% एक्स्ट्रा देते थे, बोर्ड्स में नहीं, वो तो उनका कंट्रोल नहीं था, बट उससे पहले 7th, 8th, 9th ग्रेड के जितने भी खिलाड़ी थे, चाहे वो फुटबॉल खेलते हों या क्रिकेट खेलते हों, स्पेशली अगर स्कूल के लिए और नेशन के लिए खेलते थे या डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलते थे, तो उनको 10% एक्स्ट्रा मिलते थे। पासिंग मार्क्स होते थे 50, अपने आने 45, 48, 10 जुड़ने 58। मैडम कहती थी कि मारे नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल तुम्हें बचा लेता है, नहीं तो। मैंने कहा नहीं तो क्या मैम, उसी का स्कूल है, उसी की चलेगी, आपकी क्लास में चलेगी। दिस इज़ योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, पर यहाँ पे आपकी चलेगी। यार कोई बात खास करना चाहते हैं तो आई एम हियर फॉर यू, 972-235-5555। एंड बड़ी खास बातें और हैं, कुछ गिव अवेज हैं मेरे पास जिसकी बात आपको बताऊंगा, हाउ टू विन दम। फॉर नाउ लेट्स टेक यू टू द नेक्स्ट ट्रैक, जो कि एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास अपने पंजाबी भाई हैं जी, जिनका आपने रेस्टोरेंट का नाम भी सुना है, चंडीगढ़ बाइट्स एलन में है, और वो कह रहे हैं यार चंडीगढ़ के लिए गाना आया है क्रीम लैंड, तो क्यों ना उनकी रिक्वेस्ट पूरी करें। हियर वी गो।

0: आप भी कहेंगे वाओ व्हेन यू चेक आउट द प्रॉपर्टीज व्हिच इज ब्रॉट टू यू बाय grahapravesh.com. GRUH लिखने में आता है कि हाँ ग्रह प्रवेश ही जाता है. GRUHAPravesh.com brings you the India Property Expo which is happening for you on May 9th and 10th. This is at the beautiful Hyatt Regency in Frisco. यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आप मिल सकते हैं टॉप बिल्डर्स से फ्रॉम सिटीज लाइक हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली NCR, शोकेसिंग ओवर 200 प्रीमियम प्रोजेक्ट्स फ्रॉम लग्जरी अपार्टमेंट्स एंड विलास टू प्लॉट्स एंड फार्मलैंड. मेरी इतना शौकीन हो फार्मलैंड के, then this is the place you've got to be. Whether you're looking for a ready-to-move home or exciting new launches, enjoy exclusive Expo-only deals, which are only going to be available at the Expo. This is May 9th and 10th. Don't dream your dream. Own that dream. Register now at grahapravesh.com and make use of this. ये पता है आपको कि बीवियां पति देव को क्यों तंग करती हैं, क्यों उनका दिमाग खाती हैं? क्योंकि शनि देव ने कहा है कि तुम मंदिर में नहीं आ सकती, तुम्हें एक देव दिया गया है, पति देव, उसको टेंशन दो, हमें नहीं कन्या. छोटी सी ब्रेक के बाद मैं वापस आया. हरिओम.
1: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं.
3: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
4: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
3: Visionary Eye. See clearly, live boldly.
5: Oi, kida sa tenu? Mainu nave software kharidna pasand hai. Jo ek duje din aal kaam na kare.
6: Macha, I enjoy using inefficient and complex software aise.
7: Mujhe koi track kare, mujhe bahut acha lagta hai. Mujhe apni privacy ka koi chinta nahi, baba.
8: अगर आप इनमें से नहीं है तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिसे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है. काम एक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए.
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
11: चिकन बनाना,
12: चिकन बनाना
13: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
14: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders. Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
15: Like to dress up for parties and special occasions? Indian Attire in Frisco has a phenomenal collection of lehengas, saris, bridal wear, men's and kids' wear.
16: Traditional, ethnic wear as well as fusion. At Indian Attire, you will find designer wear lehengas at 25% off during their festive sale.
15: No need to shop around. Just head to Indian Attire of Preston and Gaylord in Frisco to find your perfect attire. For details, visit IndianAttireFrisco.com.
17: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
16: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
18: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehetalawfirm.com.

हर आदमी को ना अपनी कामयाबी के रास्ते में एक महिला ज़रूर मिलती है। हर आदमी को अपनी कामयाबी के रास्ते में एक महिला ज़रूर मिलती है। बस भाइयों, अगर तुम उसे बच जाओ ना, तो फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, इट्स 5:47 इन द स्टूडियो क्लॉक। और लेडीज़, आप मत घबराएं, क्योंकि आप उनके बाद वाली हैं, तो टेंशन नहीं है। अब उनको सही लड़की मिली है जो आप हैं। यू गॉट इट, आई एम विद यू लेडीज़। मतलब आपको तो पता है, मार्विन इज़ ऑलवेज ऑन योर साइड। वो बात अलग है कि सूरज जो है वो ईस्ट से निकलता है ना, पर जो चांद है वो किसी भी डायरेक्शन से निकल सकता है। क्योंकि जो स्पा वगैरह होते हैं, सलोन वगैरह, वो तो किसी भी डायरेक्शन में होते हैं ना।

0: रीमेक ऑफ द पुराना गाना, दिस इज पति पत्नी और वो, आयुष्मान वामिका सारा रकुल गुरु रंधावा की आवाज में सुना जी आपने ये वाला गाना। गुड इवनिंग फन एशिया वसीम भाई, क्या हाल चाल?
1: ठीक ठाक। मुझे क्वेश्चन करना था अभी जो आ रहा है ना।
0: आप क्वेश्चन के लिए होल्ड करें, मैं ऑफ द ईयर लेता हूं आपको। क्वेश्चन के जवाब हम जरूर देंगे। सवाल हमारी टीचर ने हमसे कई पूछे, उनके जवाब तो हम दे नहीं पाए, पर हमारी पब्लिक के जवाब तो हम देंगे ना। इतने मतलब काय के लिए बैठे हम लोग यहाँ, है ना। आजकल के बच्चे देखो ड्राइंग रूम में मतलब ऐसे बैठ के आराम से अपने टीवी चैनल वगैरह देखते हैं। जब गेस्ट चले जाए ना तो फटाफट अपना टीवी ऑन, जो भी उन्होंने देखना है मूवी शूवी वो चलता है। हमारे को तो ये होता था कि भैया जो समोसे बचे हैं, जो जो मिठाइयाँ पड़ी हैं, पहले वो तो पेल लें, बाकी बाद में सोचेंगे। बट वक्त बदल रहा है जी, ज़माना साथ साथ बदलता रहता है, ऐसा ही होता है दुनिया में। आपने भूत बंगला देखी है? नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी है? इट इज़ डेफिनेटली अ फैमिली एंटरटेनर। आई एम रिकमेंडिंग आप ये फिल्म जरूर देखें। यू विल डेफिनेटली हैव अ ग्रेट टाइम वॉचिंग दिस मूवी। एक गिव अवे है मेरे पास विच इज़ फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, उसकी तरफ भी जाऊँगा। पर एक गाना लगाने फिर आते हैं आपके पास फॉर दैट कॉन्टेस्ट। हियर वी गो।

0: वंडरफुल ट्रैक टेकन फ्रॉम द मूवी भूत बंगला, अक्षय कुमार एंड वामिका गब्बी. वंडरफुल कहानी, थोड़ी सी मतलब अनरियल है, बट यू नो इट्स अ मूवी यार. मूवी को मूवी की तरह देखो, एंड आई थिंक इफ यू वॉच इट एज अ मूवी, नॉट बी अ क्रिटिक, यू विल डेफिनेटली इंजॉय. टुडेज गेम वॉज बिटवीन लखनऊ सुपर जायंट्स एंड मुंबई इंडियंस. पहले लगा कि लखनऊ ये गेम जीत जाएगा, बिकॉज दे प्लेड वेरी वेल. 228 फॉर 5 इन देयर 20 ओवर्स, जिसमें निकोलस पूरन स्टूड आउट 63 रन ऑफ 21 डिलीवरीज. मिशेल मार्च 44 ऑफ 25 एंड हिम्मत सिंह 40 ऑफ 31. व्हाट अ वंडरफुल प्लेयर ही इज एज वेल. बट उसके बाद जब बल्लेबाजी आई मुंबई इंडियंस की, तो भैया 100 एंड सम रन पे ये नो विकेट लॉस थी. एंड रोहित शर्मा लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट 84 ऑफ 44. वेलकम बैक रोहित भाई, आपकी प्रेजेंस डेफिनेटली फेल्ट हुई. रायन रिकल्टन, व्हाट अ गेम ही प्लेड, 83 ऑफ जस्ट 32 डिलीवरीज. एंड नमन धीर 23 ऑफ 12, टेकिंग द टीम टू 229 फॉर 4 इन 18.4 ओवर्स विद 8 बॉल्स रिमेनिंग एंड 6 विकेट्स इन हैंड. मुंबई इंडियंस वॉन दैट गेम. गिव अवे टाइम, लाइक आई सेड, आई हैव समथिंग फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर. आहा, इनका तो नाम लेते ही मतलब जुबान मेरी जो है लटपटा जाती है फ्लेवर से. एंड इफ यू वांट टू हैव सम गुड फूड, देन दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. कंडीशंस बड़े सिंपल होते हैं कि पहले आपने गिव अवे ना जीता हो, एटलीस्ट इन द लास्ट 30 डेज. नंबर टू, यू आर एबल टू गो टू एलन रिचर्डसन या मिकिनी की लोकेशन. फ्रिस्को डज नॉट पार्टिसिपेट. एंड व्हाट विल यू विन, ड्राई चिली चिकन है, वेजिटेरियंस के लिए चिली बेबी कॉर्न है, या फिर जबरदस्त वाला बेस्ट बटर चिकन इन डैलस, विच इज RHCP's चिकन मक्खन वाला. सवाल क्या है, सवाल तो दुनिया पूछ रही है. द नेशन वॉन्ट्स टू नो. आर्नव तो नहीं हूं मैं, खैर, बट हियर इज द सवाल. गाना लगा रहा हूं, फिल्म आप बता दो. कॉलर नंबर 3, हु गिव्स मी द राइट आंसर, गेट्स रेड हॉट चिली पेपर यमलेशियस फूड. नेम ऑफ द मूवी प्लीज.
1: भाजी ये शादी है ना.

0: वाह जी वाह, 9 दिन पहले गाना आया और लाइन तो ऐसे लगी है कॉलर्स की जैसे कि ये गाना बड़ी बार सुना है। गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
1: दिस इज मेनका।
0: मेनका
1: जी,
0: मैंने कुछ नहीं किया मेनका जी, मैं तो बड़ा शरीफ सा आदमी हूँ। मेनका जी बताइए, फिल्म का नाम मालूम है?
1: पति पत्नी और वो।
0: पति पत्नी और वो, ये जो वो है ना, उसने बड़ा तंग किया हुआ है। एक सीरियल आता था पहले, वो बहुत पहले, अब उसको सस्पेंस में रखते हैं। पहला नंबर का कॉल था मेनका जी, देखती हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि कोई और है जो देगा सही जवाब। गुड इवनिंग फनीशा, हु इज दिस?
2: हाय, दिस इज पवन।
0: पवन, पंछी नदिया पवन के झोंके, कैसे हैं पवन भाई, सब ठीक है?
2: सब ठीक है सर,
0: चलो सब ठीक ही रहना चाहिए। पवन भाई, फिल्म का नाम मालूम है?
2: पति पत्नी और वो दो।
0: पति पत्नी और वो दो, हाँ ये तो आपने आगे का हिस्सा जोड़ा है, जो पति पत्नी और वो दो हिस्सा जोड़ा है, जो दो नंबर के कॉलर तो आप थे। खैर देखते हैं आपका जवाब दुरुस्त है कि नहीं। कौन है मेरे साथ? अरे मुन्नी, अभी खिलाते हैं आपको बटर चिकन। मुन्नी का वॉल्यूम लो, मुन्नी के बनाने वालों का वॉल्यूम उठाओ। कौन बोल रहा है?
3: हाय, दिस इज मिरल हियर।
0: मिरल, कैसी हैं?
3: मजे में, आप कैसे हो?
0: मैं भी मज़े में ही हूँ। बाकी आपको पता ही है, बचपन में गिर गया था, बॉडी की चोटें ठीक हैं, दिमाग वाली रह गई हैं। अच्छा मिरल,
3: सेम हेयर।
0: ये अच्छा, सेम हेयर, वेरी गुड, मेरे जैसा कोई तो मिला। मिरल, आपकी ये जो नन्नी मुन्नी चला रही थी, इनका नाम क्या है?
3: दैट्स माय सन निवान।
0: निवान सन, ओ सन, वेरी गुड। अब बताएं फिल्म का नाम।
3: पति
0: पत्नी और वो दो। रेड हॉट चिली पेपर जाएंगी, एलन रिचर्डसन या मिकिनी?
3: मैकनी
0: होल्ड करेंगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यस इट इज पति पत्नी और वो दो।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy one, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy one, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
7: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
9: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
10: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
9: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
11: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
12: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
11: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
11: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
12: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है. हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस.
14: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं.
13: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
14: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू. उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है.
13: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे.
14: एग्जैक्टली. अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर.
13: नंबर बोल जल्दी.
14: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com.
15: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश.
16: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
17: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
18: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
19: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. I felt completely stuck. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी. उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ.
11: कॉल नाउ टू 833 गेट ओमर, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा. आपका हक, उनके जिम्मेदारी.

0: देखो दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना यार कि जिंदगी कितनी ही मुश्किल हो, जिंदगी कितनी ही मुश्किल हो, मंजिल कितनी ही दूर हो, गोलगप्पे खाते चलो ब्रो।
1: लड़ना

0: और जी हाँ बिंदास बोलो जी नाम मार्विन दास बोलो क्या हाल चाल डेलस वेलकम बैक आफ्टर द कमर्शियल ब्रेक दिस इज द 6 o'clock आवर ऑफ योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो जिसका नाम है द बिंदास शो लेके कौन आता है मैं ही यार बंदा बिंदास मार्विन दास आजकल यही नाम है ये दिया हुआ है आप लोगों ने बड़े प्यार से और इसको साथ लेके चलते हैं वैसे एक और बात बताऊँ मैन जो है ना मैन आप परेशान ना हुआ करो ज़्यादा टेंशन मत लिया करो अगर आपकी बीवी आपकी बात नहीं सुनती ना तो प्लीज़ डोंट बी स्ट्रेस्ड मैन किसी की बीवी उनकी बात नहीं सुनती है हमारे साथ कौन है गुड इवनिंग फनीश हाउ इज दिस
1: हाय माय नेम इज शीतल
0: हाय शीतल आपकी आवाज भी बड़ी ठंडी ठंडी लग रही है
1: थैंक यू जी
0: देखो वाओ कर दिया आपने अपने आप को शीशे में देखा आज वैसे
1: नहीं आप बोल रहे हो
0: गाड़ी चला रही हो कि साथ वाला चला रहा है
1: नहीं नहीं मैं ही चला रही हूँ
0: तो रियर व्यू मिरर में देखो जरा एक मिनट अपने आप
1: रियर व्यू में तो दूसरी लड़की दिख रही है और भी अच्छी
0: अच्छा वो कौन है
1: आई डोंट नो
0: नहीं नहीं रियर व्यू मतलब वो वाला नहीं साइड वाले नहीं मिडल वाला जो गाड़ी में ऊपर लगा होता है छत पे उसको साइड मिरर उसको साइड मैं फनी बचपन से हूँ गिर गया था बचपन में अब ये बताओ कि ये जो आपने चेहरा अभी देखा आपने
1: हाँ जी
0: आप सुबह से काम पे थी ना
1: हाँ जी
0: उसके बावजूद भी आप देखो सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ हाउ डू यू मैनेज टू डू दिस अच्छा एक बात बताओ आप क्या क्या अच्छा फ्राई करती हो
1: क्या फ्राई करती हूँ
0: अच्छा अच्छा क्या फ्राई करती हो
1: मैं फ्राई करती नहीं यार
0: तो फिर माँ बाप ने धोखा दिया हुआ आपका नाम तो रखा शीतल तलती तो है नहीं कुछ
1: कूल रहती हूँ ना वो तो अच्छा
0: चलो चलो शीतल जी क्या कर सकता हूँ आपके लिए बाकी लिस्नर कह रहे हैं मारवन गाना लगा
1: गाना सुनना है एक्चुअली
0: कौन सा
1: अगर आप लगा सकते हो
0: बताओ
1: तो धुरंधर में वो एक सतेंद्र सरताज एंड जैस्मिन का एक
0: सारियां छट गई हैं रामा
1: Oh my God.
0: इतने उदास क्यों हो वैसे आप कुछ हुआ ऐसा
1: नहीं उदास नहीं it just touches your soul.
0: Absolutely, बहुत ही बढ़िया गाना है जी आपके लिए आ गया है और एक और कॉलर भी था आपसे पहले जिन्होंने धुरंधर का ही गाना रिक्वेस्ट किया था सो आई एम गोना टेक पीपल देयर थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल शीतल मतलब बाय गॉड गर्मी लग रही थी अभी तक ना ऑफिस में बैठे बैठे एकदम शीतल से बात करके ना मतलब यू नो इट है ना

0: We are going to head to a short commercial break. Aap kahin mat jaiyega. I'll be right back with more fun and more entertainment and khush rehne ka ek simple tarika bataunga. Bilkul khush rahenge aap log break ke baad.
1: Ek baar jo maine commitment kar di to phir sirf fun asia hi sununga.
2: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
3: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में.
2: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
3: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
5: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है. हर जगह answers ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना. Connect with Anita Chundru at The Colony, Texas. Chart reading, Vedic astrology, numerology aur Havan services se mile sahi guidance. Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
4: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
6: Ek baat bata, retirement mein sabse scary kya hota hai?
7: Kya?
6: Salary band ho jati hai.
7: Aur bills band nahi hote.
6: Exactly. Isliye smart log wealth tactics se strategy banate hain.
7: Matlab?
6: Aisi strategy jahan income rukne ke baad bhi पैसे का फ्लो बंद नहीं होता.
4: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
8: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
9: कहते हैं माँ के हाथ का खाना दुनिया में सबसे स्पेशल होता है, पर इस मदर्स डे लेट्स मेक थिंग्स स्पेशल फॉर हर. एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस वेयर शी एंजॉयज एंड वी सेलिब्रेट हर.
10: द फ्लेवर लाउंज वेयर एवरी डाइनिंग मोमेंट इज एन एक्सपीरियंस.
9: ऑन दिस मदर्स डे फ्लेवर लाउंज ला रहा है एक मीठा सा सरप्राइज, अ कॉम्प्लीमेंट्री डिजर्ट फॉर एवरी मदर.
10: द फ्लेवर लाउंज एट प्रेस्टन रोड फ्रिस्को एट मलाबार गोल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर मदर्स हु मेक लाइफ फ्लेवरफुल.
11: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
16: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಡ್ಯಾಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ 9th May and 10th May. ಸ್ಥಳ ಹಯಾತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ ಡ್ಯಾಲಸ್. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ವರೆಗೆ. ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.

बहुत सारे लोग परेशान हैं, कहते हैं खुश कैसे रहना है, खुश कैसे रहना है, खुश रहना बहुत मुश्किल नहीं है। ओशो को याद करते हैं आप, इट्स नॉट डिफिकल्ट, खुश रहना बहुत आसान है, खुश रहना बहुत मुश्किल नहीं है। क्या करना है? देखो, खुश रहना चाहते हो तो पहले अपने दिल की सुनो। खुश रहना चाहते हो तो पहले अपने दिल की सुनो, फिर दिमाग की सुनो, और फिर जो बीवी कहती है वो करो। देखना एकदम से सुख शांति आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगी। दास है रस पीने की प्यास है, बनता ये बिंदास है। और तब आपको पता चलेगा कि जिंदगी में खुश रहना कितना आसान है। आप लोग सुन रहे हैं फनेशिया रेडियो, वेलकम बैक, 626 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:26 हो चुके हैं भैया, और मैं रहूंगा आपके साथ 7 बजे तक। मई की 4 तारीख है, मंडे है। हाँ हाँ, हमें लगता है संडे खत्म हो रहा है ना, रात को कितना डिप्रेसिंग हो जाता है ना, बस संडे खत्म। भाई यही दस्तूर है, ऐसा ही होता है। एक बारी 90 आ जाए तो हर बारी 90 नहीं आते बेटा,

एक लड़का लेट पहुंचा स्कूल। टीचर ने पूछा, क्या हुआ, तुम लेट क्यों आए? कहता, मैम सड़क पे बोर्ड लिखा हुआ है, बोर्ड पे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उस वजह से लेट हो गया। कहती, क्या लिखा है बोर्ड पर? कहता, मैम वहाँ लिखा है आगे स्कूल है, धीरे चलिए।

0: दिन से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: बदराव,
0: वाट लगे रे पोरे जी।

0: लैपटॉप, चार्जर, कॉफी, फोन, उफ, ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता।
1: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग।
0: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है।
1: हाँ, आई कीप दैट पाथ सिंपल।
0: कैसे?
1: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे।
0: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी।
1: या कैरेट लेन काइंड।
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product. Now open in Frisco.
3: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
4: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
3: Rose ka same problem.
5: Jab concepts clear nahi hote, to bachche confused hi rahenge. Lumity Learning Center, jahan bachche ratte nahi, samajhte hain. Lumity ka custom curricula, Frisco, Prosper and McKinney ISD standards ko match hi nahi, exceed karta hai.
6: Personalized learning plans in math and English for kids aged 5 to 13. Continuous feedback, on-demand support aur har step par strong critical thinking.
7: Conveniently located at Coit and Panther Creek in Frisco.
8: Call 972-666-1181 or mention kare Phanasia, get $100 off your first month. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
9: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
9: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
9: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
9: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
2: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
11: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी, जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
10: के टू ड्राइव मतलब?
11: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
10: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
11: 100%
12: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 केटो ड्राइव, डायलिसिस स्मार्टेस्ट फ्लीट पार्टनर।
13: सब कुछ साफ रख सकते हो,
14: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
15: क्योंकि ये कौन बोला?
14: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
16: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
17: Whether it's a private housewarming, a family wedding reception, or a large convention, Bawarchi Biryani caters everything from live dosas and freshly grilled appetizers to chat stations and more. Bawarchi Biryani knows exactly how to make your event the talk of the town. Make your event memorable. Visit BawarchiCaters.com or call 496-995-9443.
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit SIUTNA.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

राजा हरिश्चंद्र ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाते थे। और ये जो सत्यवादी लगा, क्यों लगा? क्योंकि वो सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब वो झूठ क्यों नहीं बोलते थे? अरे भैया, वो झूठ इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि उनकी पत्नी ने कभी ये नहीं पूछा, कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कब आओगे, फोन करना। लास्ट ट्रैक फ्रॉम माय साइड, इसके बाद लूंगा जी आपसे इजाजत।

0: A.R. Rahman at his best with this track, which is Rubaru, taken from the movie Rang De Basanti. What a beautiful movie it was. Nahi dekhi? That is surprising. You've got to watch that movie if you haven't seen it. Acting sabki hi top notch hai. Not just Aamir Khan, but I think the whole crew did a wonderful, wonderful job. You know, shayari sunne mein achhi lagti hai, par kai baar isko zindagi mein istemal nahi karna chahiye. Jaise, raat gayi to tare chale gaye, raat gayi to tare chale gaye, gyaron se kya gila, jab hamare chale gaye. हम जीत सकते थे हर बाजियां, हम जीत सकते थे हर बाजियां, बस कुछ अपनों को जिताने के लिए हम खुद हारते चले गए. ये जो सुनना है जी, वाह वाह वाह तो बहुत हो जाती है, बट डोंट डू दैट मैन. क्यों आपको क्यों हारना है? आपकी जिंदगी है. वन लाइफ दैट यू हैव, यू आर अ विनर, बॉर्न विनर. एंड यू नो व्हाट, गॉड हैज मेड यू यूनिक इन हिज ओन वे. हर इंसान उस ऊपर वाले ने अलग तरीके से बनाया है. हर इंसान के पास कोई ना कोई एक खास टैलेंट दिया है, चाहे वो खाना बनाने का है, चाहे वो किसी को कंफर्ट देने का है, चाहे वो किसी को हंसाने का है, चाहे एनीथिंग यू लुक एट इट, चाहे पेंटिंग है, चाहे आर्ट है, चाहे सिंगिंग है, यू नो. एंड यू आर द वन दैट यूजुअली स्टॉप्स योरसेल्फ. आपको लगता है कि मेरा काम इतना अच्छा नहीं है. अगर आप गाते हो तो शायद आपको ऐसा लगता हो कि मैं अच्छा नहीं गाता. अगर आप लिखते हो तो आपको लगता हो मैं अच्छा नहीं लिखता. दैट इज़ नॉट योर जॉब, इट इज़ फॉर द वर्ल्ड टू गेस. अगर सारे आर्टिस्ट, चाहे बीटल्स हो, चाहे माइकल जैक्सन हो, चाहे जो भी हैं, चाहे यार रहमान साहब है, अगर वो म्यूजिक बना के रिलीज नहीं करते तो कहाँ से अप्रिसिएशन मिलती. सो इफ़ यू हैव समथिंग दैट इज इनसाइड यू, वर्क ऑन इट, रिलीज इट, गेट इट आउट देयर एंड डू नॉट जज योर सेल्फ. लेट द वर्ल्ड बी देयर फॉर द जजिंग. मिस ढिंचैक पूजा, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, अरे यार उसके भी फैन है. So why not you? With that thought, it is good night, bye bye, adios. Hamesha kehta hoon, the man or the woman in the mirror is the most important. I kept telling you guys this, but I stopped. Matlab kehna aasan hota hai, follow karna mushkil, and I was one of them. And you know, I neglected my health for a little bit, and that I paid a price for. And what I've learnt is I am the most valuable. Everything around me runs with me being well. Good evening, Fanasia. Before I go, what can I do for you?
1: Off air, right, sir?
0: नहीं सर, ऑन हेयर है बट ऑफ हेयर ले जाता हूँ. होल्ड ऑन द लाइन फॉर मी. थैंक यू वेरी मच डैलस फॉर बीइंग विद अस ऑन फनेजिया रेडियो. मेरे बाद आई थिंक इपी द हिपी इज गोना बी जॉइनिंग यू 7 to 10 PM विद हर शो. एंड गिव हर कंपनी, गिव हर सम हौसला. शी इज न्यू बट आई थिंक शी इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. विद दैट इट इज गुड नाइट, अडियोस, बाय बाय. दुआ में मुझे याद रखिएगा. आई विल डू द सेम फॉर यू अंटिल टुमारो इवनिंग. इफ गॉड गिव्स मी अनदर डे, आई विल बी हियर टू एंटरटेन यू with your favorite evening drive time show, the Bindaas Show, only on Fun Asia Radio. Good night, shab khair.
2: Fun Asia par hi aate hain.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Full Bollywood dhamaka, Fun Asia pe.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Immigration attorneys in the DFW area, if you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join Fun Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
7: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस.
8: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
7: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
8: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
7: ये क्या होता?
8: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
10: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
11: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
10: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
9: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. Faisla Clarity ke saath. Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
12: घर की याद नहीं आई तुझे? जैसे
13: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ.
9: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं. विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट.
13: सच में बिल्कुल घर जैसा.
9: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर. लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट. चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम.
14: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.